0: आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
3: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्मभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
4: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
2: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजाति समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
4: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
2: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। सबके लिए

0: सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
2: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं पाई है, फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलए ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
2: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hiked by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jayashankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and Padma Shri.

0: रानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
1: म्यूजिकली योर्स पर आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव। हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल, नमस्कार। मुंबई सुबह की चाय हो चुकी है, लोकल गिरफ्तार शुरू हो चुकी है और अब वक्त है मुंबई के मस्ताने का। जी हाँ, हेलो मुंबई में मुंबई के मस्ताने, आपका फेवरेट सेगमेंट, आपका फेवरेट शो, जहां हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ना सिर्फ सपने देखे बल्कि सपनों को सिल्वर स्क्रीन पर रंग भी दिया था। हर बार हम आपके पास यानी कि मैं आपके पास अलग अलग तरीके के शो लेकर आता हूं और अलग अलग कंटेंट के लेकर आता हूं। आज भी ऐसा ही कुछ लेकर आया हूं। पहले सुनाऊंगा आपको एक गीत और उसके बाद आकर आपसे करूंगा बात। आज के हमारे मुंबई के मस्ताने हैं बॉलीवुड के वो शख्स जिनके बिना ग्लैमर अधूरा लगता है। फिल्मों में प्यार भी बड़ा होता है, दर्द भी बड़ा होता है और फैमिली भी बड़ी होती है। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, होस्ट, फैशन आइकन और कंट्रोवर्सी मैग्नेट भी रहे हैं। हालांकि हम बात कर रहे हैं करण जौहर की।

0: कॉसमॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉसमॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉसमॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आज के स्पेशल दिन की मैं आप लोगों से कुछ बातें करता हूं। जी हां, आप लोगों के बीच वही आपका हमराज आरजे अभिनव 107.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम रेनबो पर। 25 मई का दिन भारत और विश्व इतिहास में अपनी खासकर घटनाओं के लिए, कुछ दिनों के लिए और फेमस हस्तियों के जन्म मृत्यु के लिए खास रूप से जाना जाता है। आज है विश्व थायराइड दिवस। ये दिन लोगों को थायराइड के लिए जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस, दुनिया भर में लापता हुए बच्चों की याद में और उनके खोजबीन के लिए जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए दशक के अंत तक चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का लक्ष्य तय किया था। फेमस हस्तियों के जन्मदिन की अगर बात करें तो रास बिहारी बोस, जो कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे और क्रांतिकारी थे, उनका जन्म 25 मई को हुआ था। और आज हम लोग स्पेशल शो कर रहे हैं करण जौहर के बर्थडे पर, जो कि है 25 मई 1972 में। जी हाँ, हम उसी की बात कर रहे हैं। मुंबई में पैदा हुए करण जौहर फिल्मी माहौल में बड़े हुए, क्योंकि उनके पिता यश जौहर ने बनाई थी धर्मा प्रोडक्शंस, एक ऐसी कंपनी जिसने बॉलीवुड को कई सारी यादगार फिल्में दी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि करण शुरू में कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने आने में ज्यादा कंफर्टेबल थे। उन्हें फैशन, डांस, फिल्मी ड्रामा और इमोशन से बहुत प्यार था। और फिर आया साल 1998, एक फिल्म आई कॉलेज दोस्ती प्यार और फ्रेंडशिप बैंड्स का पूरा ट्रेंड बदल गया। नाम था कुछ कुछ होता है। प्यार प्यार दोस्ती है, ये डायलॉग सिर्फ डायलॉग नहीं था, पूरी जनरेशन की फिलॉसफी बन गया था। इस फिल्म ने करण जौहर को ओवरनाइट सुपर स्टार डायरेक्टर बना दिया था। उसी के कुछ गीत थे हम लोगों के पास और पेश करता हूँ कुछ कुछ होता है।

आप लोगों के बीच बना हुआ हूँ मैं, आपका हमराज आरजे हुए ना। और आज कुछ दिग्गजों की पुण्यतिथि भी है। लक्ष्मीकांत शांताराम कोदालकर, जो कि लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल डुओ में से एक थे, उनकी आज ही के दिन 25 मई 1998 को मृत्यु हुई थी और उनको हम नमन करते हैं। और आज उनकी पुण्यतिथि। और सुनील दत्त साहब, मदर इंडिया, साधना, वक्त और पड़ोसन जैसी बेहतरीन फिल्मों के लिए मशहूर दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त की पुण्यतिथि 25 मई है। 75 वर्ष की उम्र में मुंबई के बांद्रा स्थित उनके आवास पर 2005 में उनका निधन हो गया था। और बात कर रहा था मैं करण जौहर की, और आज के स्पेशल प्रोग्राम में हेलो मुंबई में और मुंबई के मस्ताने में। अब सोचिए, एक यंग फिल्म मेकर, पहली फिल्म सुपरहिट और फिर करण जौहर ने जो दुनिया बनाई उसमें सब कुछ बड़ा था, बड़े सेट्स, बड़े इमोशंस, बड़े सॉन्ग्स और बड़े स्टार्स। फिर आई वो फिल्म जिसे टीवी पर शायद भारत में सबसे ज्यादा बार देखा गया, कभी खुशी कभी गम।

एक तरफ अमिताभ बच्चन, दूसरी तरफ शाहरुख खान, और फिर काजोल, ऋतिक रोशन और पूरा बॉलीवुड जैसे एक फैमिली में कैद हो गया करीना कपूर। करण जौहर ने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने मिडिल क्लास इंडियन इमोशंस को डिजाइनर पैकेजिंग में दुनिया तक पहुंचाया था। करण की फिल्में विदेशी लोकेशंस के साथ थीं, लेकिन उनका दिल पूरा हिंदुस्तानी था। घर टूटते भी थे, लेकिन आखिर में फैमिली फोटो जरूर कंप्लीट होती थी, और यही रीजन है कि NRI ऑडियंस ने करण जौहर को सिर आंखों पर बिठाया।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉसमॉस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
2: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है,

0: मतलब सोलर पैनल की, मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएमसूर्यघर.gov.in पर।

लेकिन करण जौहर की जर्नी हमेशा आसान नहीं रही, उन पर काफी सारे आरोप भी लगे थे और लोगों ने कहा कि वो सिर्फ कुछ किड्स को और कुछ लोगों को लॉन्च करते हैं। कई डिबेट्स भी हुई, कई मीम्स बने, लेकिन एक बात कोई डिनाई नहीं कर सकता है, लेकिन करण जौहर ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा पावरफुल स्टोरी टेलर में से वो एक बने हैं। उन्होंने कई नए डायरेक्टर्स, एक्टर्स और राइटर्स को भी मौका दिया और धर्मा प्रोडक्शंस को कई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेकर राजी, ये जवानी है दीवानी से लेकर ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा तक करण ने कॉमर्शियल सिनेमा का पूरा मूड बदल दिया।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आप लोगों के बीच एक बार फिर से बना हुआ हूँ मैं आपका हमराज आरजे अभिनव। हेलो मुंबई में लेकर आया हूँ आप लोगों के पास मुंबई के मस्ताने। जी हाँ, यानी कि मस्त मुंबई है, मुंबई के मस्ताने आपको मस्ती से सरोबार कर देंगे। बात कर रहे थे हम लोग नदर देन करण जौहर की।

0: इंस्टॉलमेंट ऑफ द ईयर और उसके बाद राजी और उसके बाद ये दीवानी है दीवानी ब्रह्मास्त्र और उसके बाद और सारी मूवीज। और हाँ, करण जौहर सिर्फ डायरेक्टर नहीं मास्टर इंटरव्यूअर भी हैं। कॉफी विद करण ने बॉलीवुड गॉसिप को नेशनल हॉबी बना दिया था। रैपिड फायर राउंड ने दोस्तियां भी थोड़ी, हेडलाइंस भी बनाई और सोशल मीडिया को एंडलेस कंटेंट भी दिया था। करण जौहर की जिंदगी में एक बेहद इमोशनल चैप्टर तब आया जब उनके पिता यश जौहर का निधन हुआ था। उस वक्त करण टूट गए थे और उन्होंने सोचा था कि शायद वो धर्मा प्रोडक्शंस को बंद कर देंगे, लेकिन फिर उन्होंने अपने पिता का सपना संभाला और उसी लेगेसी को ग्लोबल ब्रांड बना दिया।
1: Natural night. Do you feel alright? Want a natural night?

आप लोगों के बीच में मैं मौजूद हूं आपका हमराज मस्त मुंबई में लेकर आया हूं मुंबई के मस्ताने और शो आपको बताइए कौन सा चल रहा है। आज धर्मा सिर्फ प्रोडक्शन हाउस नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन है। फिल्म OTT टैलेंट मैनेजमेंट डिजिटल कंटेंट सब जगह करण जौहर का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। हाल ही में उन्होंने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डील भी किया है ताकि धर्मा फ्यूचर एंटरटेनमेंट स्पेस में और आगे जा सके। मतलब साफ है, करण जौहर सिर्फ फिल्म नहीं समझते, वो ऑडियंस साइकोलॉजी समझते हैं। कब रोमांस बेचना है, कब नॉस्टैल्जिया, कब ग्लैमर और कब कंट्रोवर्सी। वेल, आप लोगों की मनपसंद कोई कुछ गीत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मेरे पास कुछ मैसेजेस आ रहे हैं और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके सारे के सारे गाने मैं प्ले करूं, जैसे कि तुम ही देखो ना या वैसा पार्टी टुनाइट अभी आएगा, रॉक एंड रोल, उसके बाद मितवा, तो बहुत सारे एक्चुअली एक्टर्स के गीत हैं मेरे पास जो मैं आप लोगों के लिए आज प्ले कर रहा हूँ।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्योंकि आज सुनील दस साहब की भी पुण्यतिथि है तो मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक और गीत पेश करता हूं उनकी याद में, उनके लिए मुकेश जी की आवाज में, मैं तो दीवाना।

बनाऊ आप लोगों के बीच यहीं पर। जी हाँ, आपका हमरा जारजे अभिनव, और आज मैंने आप लोगों के सामने कई अलग अलग तरीके के गीत भी पेश किए थे, और अब कुछ और गीत भी आप लोगों के पास जरूर लेकर आऊंगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात, करण जौहर खुद कहते हैं कि वो बहुत इमोशनल इंसान है, उनकी फिल्मों की तरह उनकी रियल लाइफ भी इमोशन से भरी हुई है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी एन अनसुटेबल बॉय में अपनी इनसिक्योरिटीज, लोनलीनेस, स्ट्रगल्स और पर्सनल जर्नी के बारे में भी खुलकर लिखा, और शायद ये ऑनेस्टी

अलग बनाती है, क्योंकि करोड़ों लोगों की नजरों में रहने वाला इंसान भी अंदर से वल्नरेबल हो सकता है। कर्ण जो लग्जरी भी हैं, लोनलीनेस भी, सक्सेस भी हैं और क्रिटिसिज्म भी, लेकिन सबसे बड़ी बात वो रिलेवेंट है। और मुझसे इस गीत की फरमाइश की थी अर्पिता दास ने, तो पेश कर रहा हूं अब ये गीत आप सब लोगों के लिए और उनके लिए भी।

यस ऑब्वियसली लव विल फाइंड अ वे, और प्यार तो हमेशा ही रास्ता ढूंढ लेता है, उसके बारे में बात कही जाती है। बॉलीवुड में रेलेवेंट रहना शायद सबसे मुश्किल काम है। तो मुंबई, ये है आज का मुंबई के मस्ताने करण जौहर, एक ऐसा नाम जिसने बॉलीवुड को सिर्फ सिनेमा नहीं, एटीट्यूड दिया, स्टाइल दिया, ड्रामा दिया और इमोशंस को ग्रैंड बना दिया। उनकी फिल्मों पर डिबेट हो सकती है, उनकी चॉइसेस पर सवाल उठ सकते हैं, लेकिन उन्हें इग्नोर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि करण जौहर सिर्फ फिल्म मेकर नहीं, एक पूरा बॉलीवुड इकोसिस्टम है। कुछ और बातें भी जरूर बताऊंगा और कुछ गीत और भी लेकर आऊंगा, हालांकि मेरे पास लाइन से कई सारे और भी आपके लोगों के लिए गीत हैं। प्रणव शिंदे ने मुझसे गीत की फरमाइश की थी, पेश करता हूं इश्क वाला लव उनके लिए और चंद्रिका सेन के लिए। बीच में लूंगा एक छोटा सा प्यारा सा ब्रेक और उसके बाद आऊंगा आप लोगों के पास वापस, तो पहले से आप लोग तैयार रहिएगा उस प्यारे से छोटे से अच्छे से ब्रेक के लिए।

0: रेस्पॉन्स डिजिटल बैंकिंग सेवा आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग
0: मोबाइल बैंकिंग
1: व्हाट्सएप बैंकिंग
0: EKYC
1: NEFT RTGS
0: IMPS
1: कॉस्मोस रूपे और वीसा डेबिट कार्ड
0: UPI जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

10 बज चुके हैं और अब वक्त हो चला है आज के समाचार का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में 4थी वृद्धि है। देश में मेट्रो शहरों में कीमतें बढ़ी हैं। भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान दिखाई दिए। आज सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। बाजार खुलने पर सेंसेक्स 800 से अधिक अंक से ऊपर था, जबकि निफ्टी 200 से अधिक अंक ऊपर चढ़ गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिनों तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी।

0: आकाशवाणी एफ एम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: और इसी म्यूजिकल योर्स पर बना हुआ हूँ मैं आप लोगों के साथ, और लेकर आया हूँ अब आप लोगों के लिए अगला शो यानी कि नया नवेला शो। मैं हूँ आरजे अभिनव, आप लोगों के साथ था मैं मस्त मुंबई में सुबह 8:40 से 10 बजे तक, और जहाँ मुंबई की रफ्तार भी और किस्सों का तड़का भी। और अब चलिए म्यूजिक की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकर आया हूँ नमस्ते भारत, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। ये धरती सिर्फ मिट्टी नहीं, ये भावनाओं की नदी है, ये संस्कृतियों का समुंदर है, और इस देश के झरने सिर्फ पानी नहीं गिराते, ये समय की कहानियां सुनाते हैं। आज है प्रीत जहाँ की रीत सदा में हम बात करेंगे भारत के उन फॉल्स की, जलप्रपातों की, झरनों की, जो पहाड़ों से नहीं मानो खुद आसमान की आंखों से उतरते हैं। कभी गर्जना बनकर, कभी ध्यान बनकर, कभी विरह बनकर, कभी प्रेम बनकर, भारत के झरने हमें बताते हैं कि गिरना हमेशा हारना नहीं होता, कभी कभी गिर कर ही इंसान ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। नमस्ते भारत, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। और अब पेश करता हूँ ये गीत।

बुलाऊं मैं आप लोगों के साथ। नमस्ते भारत में 107.1 एफएम रेनबो मुंबई पर। कर्नाटक के घने जंगलों में एक जलप्रपात है, कुंचिका फॉल्स, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। लगभग 455 मीटर की ऊंचाई से गिरता हुआ पानी जैसे कोई तपस्वी वर्षों की चुप्पी तोड़ रहा है। वो हमें सिखाता है कि ऊंचाई का असली मतलब शोर नहीं, गहराई होता है। जितना ऊपर जाओ, जितना और भी ऊपर जाओ, उतना ही विनम्र बनो, क्योंकि बादल भी सबसे ऊपर जाकर आखिरकार धरती को छूने नीचे आते हैं। कुंचिकाल मानो कहता है कि अहंकार पर्वत बना सकता है, लेकिन करुणा ही झरना बनाती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।
3: बनाऊ मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच आपका हमराज आरजे अभिनव। जी हाँ, आज हम लोग बात कर रहे हैं फॉल्स की यानी कि झरनों की। उड़ीसा के सेमीफॉल नेशनल पार्क में बरही पानी फॉल्स दो परतों में गिरता है, जैसे जिंदगी भी दो हिस्सों में बटी हो। एक हिस्सा जो दुनिया देखती है और दूसरा जो सिर्फ आत्मा जानती है। उसका गिरता हुआ जल मानो किसी ऋषि की अधूरी प्रार्थना हो। वो बताता है कि इंसान बाहर से कितना भी मजबूत क्यों ना लगे, अंदर कहीं ना कहीं एक जलप्रपात हमेशा बहता रहता है, दर्द का, यादों का, प्रेम का। और शायद इसलिए रो लेना कमजोरी नहीं है, प्रकृति का सबसे ईमानदार रूप है।

जी हाँ प्रणाम आप लोगों के साथ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई केंद्र का एफएम रेनबो चैनल और एफएम रेनबो का प्रसारण आप आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी सुन सकते हैं। बना हुआ हूँ आप लोगों के साथ मैं नमस्ते भारत में है प्रीत जहां की रीत सदा, आपका फेवरेट शो, आपका स्पेशल शो। जो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुझसे, क्योंकि प्रदीप जी ने कहा था कि मैं सबका नाम लूँ, तो मैं बता रहा हूँ कि वैदेही जी हैं, पंकज मोहड़ हैं, प्रदीप अनंत कृष्णन हैं, विजेंद्र घाटोल हैं, प्रणव शिंदे, प्रमोद चिंचलेकर, रजनीकांत पाटिल बाबा दादर से, और प्रमोद जी, फिरोज शिगनपुरिया जी, महेश भाटका, शुभ लक्ष्मी, शुभधा, महेश, अंजू, प्रवीण, रामदास, चंद्रिका सेन, अर्पिता दास और आप सभी लोग जो कि मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। यहाँ पर अब पेश करूँगा कुछ और प्यारी प्यारी सी बातें और आप लोगों के पास प्यारे प्यारे से गीत जो कि मैं लेकर आया हूँ इन झरनों की कहानियों के साथ। मेघालय का नो कली काई फॉल्स धुंध में लिपटा हुआ, रहस्यमयी, शांत और कहीं बहुत अकेला। उसकी कहानी भी दुख से जुड़ी हुई है, लेकिन यही तो प्रकृति का सत्य है, नेचर का सत्य है, नेचर का ट्रुथ है। सबसे सुंदर दृश्य अक्सर सबसे गहरे दर्द से जन्म लेते हैं। नोकाली काई हमें सिखाता है कि टूटने के बाद भी बहना बंद मत करो, क्योंकि नदी रुक जाए तो दलदल बन जाती है और इंसान रुक जाए तो भीतर से पत्थर। पेश करता हूं तुम हो

कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें हो, तो एक शेर याद आता है, वो जरूर आपके पास लेकर आऊंगा अगली बात में, जो दिलीप साहब अक्सर कहा करते थे। लेकिन काफी सारी बातें हैं कहने के लिए। अब जिक्र उस जलप्रपात का यानी फॉल्स का जिसे लोग सी ऑफ मिल्क कहते हैं। दूध सागर फॉल्स सफेद झाग से भरा हुआ, जैसे पहाड़ों पर किसी माँ ने दूध उंडेल दिया हो। जब ट्रेन उसके पास से गुजरती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आधुनिकता और प्रकृति कुछ पल के लिए एक दूसरे को सलाम कर रहे हों, प्रणाम कर रहे हों, मिल रहे हों। दूध सागर कहता है, शुद्धता दिखावे में नहीं है, प्रवाह में यानी कि बहने में होती है। अगर मन साफ हो तो इंसान भी जल की तरह रास्ता बना लेता है, पत्थरों से टकरा कर भी।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित, बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30% मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

दूसरा अगर फॉल्स के बाद अब लेकर आया हूँ कर्नाटक का जोक फॉल्स, चार धाराओं में टूटता हुआ राजा रानी रोरर और रॉकेट, मानो एक ही आत्मा के चार रूप, कभी गंभीर कभी कोमल कभी क्रोधित और कभी तेज। इंसान भी तो ऐसा ही है, एक चेहरे में कई सारी पर्सनालिटीज, कई व्यक्तित्व, कभी हम राजा बनते हैं कभी रानी की तरह संवेदनशील, कभी भीतर का शोर रोरर बन जाता है और कभी सपने रॉकेट की तरह दौड़ते हैं। जोक फॉल्स हमें याद दिलाता है कि बिखरना हमेशा टूटना नहीं होता, कभी कभी बिखरे इंसान अपना असली रूप दिखाता है। कस्टो मजा।

सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के साथ मौजूद हूं और बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ का चित्रकूट फॉल्स, भारत का सबसे चौड़ा जल प्रपात। मानो धरती के धरती ने अपनी दोनों बाहें खोल दी हैं, उसे नाइजीरिया ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि नियाग्रा ऑफ इंडिया कहा जाता है, नियाग्रा फॉल्स। लेकिन सच कहें तो हर भारतीय जलप्रपात की अपनी आत्मा है। चित्रकूट हमें सिखाता है कि विशाल बनने के लिए ऊंचा होना जरूरी नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए जो सबको समेट ले। और यही तो है भारत की पहचान, भाषाएं अलग, कपड़े अलग, रीति अलग, लेकिन भाव एक। बताऊं अब मेरा फेवरेट गीत आप लोगों के पास, आप लोगों के सामने, और आप लोग सुनिए हैरत।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू, आज ही संपर्क करें।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: केरल का अथेरा एपली फॉल्स, घने जंगलों के बीच गिरता हुआ जल, मानो प्रकृति ध्यान में बैठी हो। यहाँ हवा भी धीरे चलती है, जैसे पेड़ किसी प्राचीन मंत्र को सुन रहे हों। अथेरा एपली हमें बताता है कि प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती और फिर भी सब कुछ पूरा कर देती है। आज इंसान भाग रहा है वक्त के पीछे, पैसों के पीछे, पहचान के पीछे, लेकिन जलप्रपात यानी फॉल्स कहता है, बहो भागो मत।

भारत के झरने यानी जलप्रपात सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं है, पर्यटन स्थल नहीं है, ये हमारे देश की जीवित कविताएं हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि ऊंचाई में विनम्रता हो, गिरने में सुंदरता हो, टूटने में संगीत हो और बहने में जीवन, यही भारत है, जहां पत्थर भी प्रार्थना करते हैं, नदियां माँ कहलाती हैं, जहां जलप्रपात भी दर्शन बन जाते हैं। मैं हूं आरजे अभिनव पराश और आप सुन रहे हैं नमस्ते भारत का खास सेगमेंट है प्रीत जहां की रीत सदा, जहां हम सिर्फ भारत को देखते नहीं है, उसे महसूस भी करते हैं। कैसा लगा हमारा शो, अपना फीडबैक जरूर भेजिएगा। FM रेनबो मुंबई के नाम से हम लोग हैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, और AIR_ मुंबई के नाम से हैं ट्विटर पर, जो कि अब है X। मेरा नाम है आरजे अभिनव पराशर, सभी जगहों पर आप लोगों को मिल जाऊंगा। बैक टू बैक कुछ गीत पेश करता हूं अब आप लोगों के सामने।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: नमस्कार, आइए सुनते हैं अभी के ताज़ा समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आज दो पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। समाचार में आगे, पेट्रोल की कीमतों में आज ₹2.61 और डीजल में ₹2.71 की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले दो सप्ताह में चौथी वृद्धि है। देश मेट्रो शहरों में कीमतें बढ़ी। सेंसेक्स की अगली खबर, भारतीय शेयर बाजार में सकारात्मक रुझान दिखाई दिए। आज सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। बाजार खुलने पर सेंसेक्स 800 से अधिक अंक से ऊपर था, जबकि निफ्टी 200 से अधिक अंक ऊपर चढ़ गया। समाचार में आगे, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजा बकरी ईद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्दी ही दी जाएगी। समाचार के अंत में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड की उत्तर पत्रिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त कर

की अंतिम तिथि आज तय के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला लिया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पूर्ण मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। सुनते रहिए FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

नमस्कार सुप्रभात, और इस स्वागत हम आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम ब्रेक फ्री में। जी हाँ, समय हो चला है ब्रेक फ्री होने का। जी हाँ, मेरे यानी आरजे डॉक्टर निखिल विद्याहरिंद्र शास्त्री के संग। जी हाँ, हिंदुस्तान के साथ नाचने, हिंदुस्तान के साथ गाने आ गया है डॉक्टर निखिल शास्त्री।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कॉस्मोस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
2: इंटरनेट बैंकिंग,
1: मोबाइल बैंकिंग,
2: व्हाट्सएप बैंकिंग,
1: ईकेवाईसी,
2: एनईएफटी, आरटीजीएस,
1: आईएमपीएस,
2: कॉस्मोस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
1: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मोस बैंक में जरूर होना चाहिए।
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ दोस्तों, ब्रेक फ्री में आज बातें करेंगे, कुछ रोमांटिक बातें करेंगे, आइस ब्रेकिंग की बातें करेंगे। आइस ब्रेकिंग यानी कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि किसी अनजान व्यक्ति से या किसी प्यारे इंसान से हमें बात करने का मन होता है। जैसे आनंद फिल्म में राजेश खन्ना जी बाबू मोशाय करके किसी अनजान आदमी को आवाज़ देते थे, उनसे बात करते थे, मिलते थे, शेक हैंड करते थे। तो आप क्या करते हैं अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको अच्छा लगे या प्यारा लगे, तो आप कैसे पहल करते हैं, या आप पहल करते हैं या नहीं करते हैं, ये भी हमें बताइए। और थोड़ा सा और विषय को ब्रॉड कर लेते हैं, और जिसमें जो है फर्स्ट डेट की भी बात आप कर सकते हैं, या पहली बार आपने कैसे बात की उस व्यक्ति से जिसे आप प्यार करते थे। तो थोड़ा सा और खुला आंगन विचारों का करते हैं, और बताइए आपके लाइफ के कुछ दिल के करीब वाले किस्से। यही FM रेनबो पर जो है म्यूजिकली योर्स, और वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी के संदेश आ रहे हैं। जी हाँ, वैदेही शुभदा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? महेश

0: रहा कहिए, पुणे से हमारे दोस्त राकेश माथुर, फिरोज सिंगनपुरिया इंदौर से, अजय साखरे, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, प्रदीप, अनंत कृष्ण, प्रणव शिंदे, और अकोला से हमारे जो दोस्त हैं विजेंद्र घाटो, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और बताइए, आपके दिल के करीब आपने पहल कैसे की या क्या ट्रिक आजमाई है? तो थोड़ा समाज प्रबोधन भी हमें करना चाहिए कि कैसे लाइफ में आगे बढ़े और कैसे जो आइस ब्रेक होता है रिश्तों के बीच में का, तो क्या करना चाहिए? हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको तो पता ही है वैसे, 8657661071। जी हाँ, 8657661071। तो आइए, क्या आइडियाज आपने सोचे या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं।
1: डील बोले तो
2: हार्ट हार्ट
3: अमा यार, सौदा सौदा।
2: ओहो,
4: दोनों डील कर सील,
1: टाइट टाइट, वेरी टाइट।

ब्रेक फ्री में बातें चल रही है आइस ब्रेकिंग की। जी हाँ, यानी कभी कभी रिलेशनशिप में जो है पहली बार हो आखिरी बार हो हम जब मिलते हैं और थोड़ी सी झिझक होती है कि कैसे बात करें, कि कैसा है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। जी है, तो बाजीगर का फिल्म का वो गीत याद आता है। तो आपने कौन सी ट्रिक यूज़ की थी, भले वो रिलेशनशिप आगे बढ़ पाए या न बढ़ पाए, पर वो जो यादें हैं वो किसी के लिए जो है होटल के बाहर इंतज़ार करना और कब वो आएगी या कब वो आएगा और क्या कहे दर्शन होगा। हाँ जी हाँ, तो आपके लाइफ में ऐसे क्या हुआ या आपने कैसे पहल की, या फिर इंतज़ार के बारे में बताइए या जो बातचीत हुई उसके बारे में बताइए, पहली मुलाकात के बारे में बताइए, पहली बात के बारे में बताइए, कैसे आपने बात छेड़ी। जैसे फिल्मों में अक्सर होता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या ये रुमाल आपका है, तो या फिर इस अंदाज़ में आपने जो है इनिशिएट किया। जी हाँ, आपकी बातें सुनने को बेकरार हूँ, यही FM रेनबो पर। जी हाँ, म्यूजिकली योर्स।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
2: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
1: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध, शर्तें लागू।
2: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ दोस्तों, ब्रेक फ्री में हमारी बातें चल रही है आइस ब्रेकिंग के बारे में। तो हमारे जो दोस्त है महेश बोहरा, अजमेर राजस्थान से लिखता है कि कभी कभी हमें जो है कोई व्यक्ति ज़्यादा नॉलेजेबल लगता है, तो ऐसे इंसान से, ऐसे व्यक्ति से वो खुद जाके बात करते हैं जिससे थोड़ा हमें भी नॉलेज मिल सके। जी हाँ, बहुत ही अच्छा तरीका है। और भी उन्होंने लिखा है, स्पेशली सफ़र के दौरान, ट्रेन के सफ़र के दौरान इससे फ़ायदा होता है कि हमें जानकारी भी मिलता है और सफ़र कैसे तय किया ये भी समझ में नहीं आता। बहुत बढ़िया महेश, आपने अच्छा ओपिनियन बताया। और हमारे जो दूसरे दोस्त हैं अयास जी, उन्होंने कुर्ला से हमें फ़ोन करके बताया कि रिलेशनशिप में दोस्ती बढ़ती जाती है और कभी-कभी हमारे मन की बात हम कुछ चीज़ें उपहार के तौर पर देके या फिर आइस ब्रेकिंग की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने अपने स्कूल की बात, कॉलेज की बात की कि केक का एक्सचेंज होता था, कि उनके कोई फ्रेंड है वो उन्हें केक देती थी, ये भी उन्हें केक देता था। तो रिलेशनशिप आगे बढ़े न बढ़े, पर हमें जो है रिलेशनशिप, वो जो इमोशंस का एहसास है, भावनाओं का एहसास ज़रूर मिलता है। और हमें जो डर लगता है कि सामने वाली व्यक्ति जो है वो हमें ना कह देगी, हाँ कहती है, इससे भी हम उभर जाते हैं। तो जी हाँ, पहल की बातें चल रही है। तो अक्सर मेरी बात करूँ तो जब भी हम मुंबई में घूमते हैं, स्पेशली गेटवे ऑफ इंडिया या फिर मरीन ड्राइव, कहाँ भी घूमते हैं, तो हम अक्सर फॉरेनर्स को देखते हैं। तो फॉरेनर्स से भी बात करना बहुत जनों को झिझक होती है। तो इजी ट्रिक ऐसी है, कभी हाई कर सकते हैं, या फिर कभी कभी हम पूछते हैं विच कंट्री, हाँ, तो फिर वो भी जोवियल मूड में होते हैं, वो भी एंजॉय करते होते हैं, पर्यटन के लिए आए होते हैं और एंजॉय करते हैं, तो वो भी बताते हैं और थोड़ी बहुत इंटरेक्शन होती है। या फिर सिंपली हम पूछ सकते हैं एंजॉइंग मुंबई, एंजॉइंग इंडिया। तो उनके जो थॉट्स है, कभी कभी अच्छे विचारों के आदान प्रदान भी होते हैं, कौन सी बैकग्राउंड

है, क्या करते हैं वो भी बताते हैं, हमें भी पूछते हैं, और हमारे देश के बारे में, हमारे बारे में हम कुछ बता सके, हमारे कल्चर के बारे में, कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। तो जी हाँ, पहल की बात है, आइस ब्रेकिंग की बातें चल रही है, ब्रेक फ्री कार्यक्रम में हम सारे दोस्त महफिल में शामिल हो चुके हैं। पंकज मोहड़ है, अशोक पाटिल है वरी से, और शुभलक्ष्मी मस्तकर है। शुभलक्ष्मी मस्तकर लिखते हैं कि स्कूल में या कॉलेज में अक्सर जो है हम बात करने में डरते थे, पर बात करनी चाहिए, तो जिससे हमें जो है हम सामने वाले इंसान को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और दोस्ती भी अच्छी बन सकती है। तो थैंक यू आपके विचारों के लिए शुभलक्ष्मी। और वैसे मेरे स्कूल की बात भी मैं कहना चाहूँगा, इसी बात पे याद आई, पर पहले एक गीत सुनते हैं, और भी आप दोस्तों के जो संदेश आ रहे हैं वो भी पढ़ूंगे, और देखते हैं ये टॉपिक कहाँ जाता है। और आप भी सजेस्ट कीजिए, सिर्फ मैं अपना गानों का डब्बा खोल रहा हूँ, आप तो कुछ गाने एक्सचेंज नहीं कर रहे, मुझे भी भेजिए इस विषय से जुड़े हुए गीत, आप भेज सकते हैं, वी आर ओपन। तो आइए, लक्ष्य रखना चाहिए लाइफ में आगे बढ़ने का, रिलेशनशिप में भी, काम में भी, और

0: जी दोस्तों, हमारे सीनियर पर यंग एट हार्ट ऐसे जो हमारे दोस्त हैं, हमारे श्रोता हैं, महेंद्र भाई आगाशे से उन्होंने ढेर सारी शुभकामनाएं दी है हम सबको, FM रेनबो चैनल को, और वो भी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं, और भी कई सारे संदेश हैं। पहले एक छोटा सा विज्ञापन सुन लेते हैं, और संदेश के बारे में और आज का जो विषय है उसके बारे में और बातें करेंगे। पहल के बारे में वैसे
1: शुरू करने
0: बातचीत चल
1: वाली
0: रही
1: फिक्स्ड
0: है।
1: डिपॉजिट स्कीम सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
2: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
3: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
4: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।
6: हर

जी हाँ, आप सभी के संदेश मुझ तक, हम तक पहुंच रहे हैं और कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हो, और इंतज़ार की बात चल रही है, बात करने की पहल की बात चल रही है, पहल करे या ना करे उसकी बात चल रही है, और अनजान व्यक्ति से या फिर प्यारे लगने वाले व्यक्ति से बात छेड़ना, कैसे शुरू करे, आइस कैसे ब्रेक करे, तो अच्छे सुझाव भी आए हैं। और एक सुझाव है, जनरली काम आता है, अगर आपको आगे बात करनी है नहीं करनी है वो हमारी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है, पर आप कॉम्प्लीमेंट देकर भी बात की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप लिफ्ट में गए और किसी का परफ्यूम बहुत अच्छा लगा, गर्मी के दिन है, परफ्यूम बहुत अच्छा लगा, तो वही जेनरस कॉम्प्लीमेंट देना, एक दूसरे की तारीफ़ करना, जैसे अच्छी हेयर स्टाइल है या फिर अच्छी बिल्ट है या फिर शर्ट पैंट का कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट दे के भी आप जो है आइस ब्रेक कर सकते हैं, किसी से बात करने की पहल कर सकते हैं, और कभी-कभी कुछ हमारे दोस्तों को इंतज़ार करने में भी मज़ा आता है, तो वो भी सही तरीका है जीने का और वेट एंड वॉच करने का, और आंखों से ही अपने दिल का हाल बयां करने की भी एक अलग अदा होती है। तो हमारे जो दो दोस्त हैं, उन्होंने, पंकज मोहड़, उन्होंने इसी से जुड़ा हुआ एक गीत सजेस्ट किया है, तो वो भी सुन लेते हैं। जी हाँ, तो आप भी जो है टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी गीत अगर मन में आ जाए तो बेझिझक हमारे व्हाट्सएप नंबर 8657661071 पर भेज सकते हैं, तो कोशिश करेंगे। अगर वो फूल माला में बैठ रहा है तो जी हाँ, उस फूल की भी माला बनेगी, जी हाँ, उस गीत की भी माला बनेगी। ठीक 12 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ हेडलाइंस इन हिंदी, उसके बाद 12:02 पे हमारा जो यूथ सेगमेंट है म्यूज़िक कैफ़े, उसमें हम, हमारी खास बातें होने वाली हैं, विशेषज्ञ को भी हमने बुलाया है, तो 11 से 12 थोड़ी दिल की बात की, और 12 के बाद जो है थोड़ा लाइफ में और ऊपर जाएंगे, तो थोड़ा सस्पेंस बना के रखता हूँ, और गाने भी एंजॉय करेंगे, और उसके बाद विशेषज्ञ से चर्चा भी होगी, कौन आ रहा है, क्या विषय है, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। ठीक 12:02 में हम जो है

विशेषज्ञ से ही इसके बारे में सलाह बातचीत की जाए। तो आइए अगला एक गीत सुनते हैं, उसके बाद समाचार सुन के हमारा जो कार्यक्रम है म्यूजिक कैफे उसका भी स्वागत करते हैं। तो आइए तेरे नाम फिल्म से अगला गीत एंजॉय कीजिए।

घड़ी में ठीक 12:40 हो चले हैं और आइए सुनते हैं अभी के ताज़ा समाचार। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशीमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान किया जाएगा। समाचार में आगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के तहत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी। यह समझौता पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में हुए समझौते से पूरी तरह अलग होगा। समाचार में आगे, राज्य में आज 2 दुर्घटनाएं में कुल 13 लोगों की मौत हो गई। महाबलेश्वर और पोलादपुर के बीच अंबेनड़ी घाट इलाके में सुबह एक स्कॉर्पियो 800 फुट खाई में गिरकर 8 लोगों की मौत हो गई। दूसरी घटना में मुंबई आगरा मार्ग पर धुड़े के पास रीतिका डंपर वाहन से टकरा कर 5 लोगों की मौत हुई और 25 घायल हो गए। समाचार के अंत में, अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर के साथ साथ राज्य के अकोला, नागपुर और गढ़चिरौली जिले के लिए कल तक भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने कहा कि बुलढाणा और वाशिम जिलों को छोड़कर विदर्भ के अधिकांश हिस्सों में उच्च तापमान जारी रहेगा। कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल, म्यूजिकली योर्स।

0: आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम म्यूजिक कैफे में। और जैसे मैंने आपको कहा था कि आज हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ने वाले हैं। जी हाँ, आज 25 मई जो होता है जागतिक थायराइड दिन होता है, दिवस होता है, तो उस विषय पे हमें मार्गदर्शन करने आज हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर शशांक जोशी हमारे साथ है। नमस्कार सर, हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार निखिल जी। नमस्कार निखिल जी, और धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।
0: थैंक यू सर।
1: मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। ये जागतिक थायराइड दिन है जहाँ पे हम थायराइड के बीमारियों के बारे में अवेयरनेस करते हैं।
0: दोस्तों, मैं पद्मश्री डॉक्टर शशांक जोशी जी का परिचय आपसे करा दूँ। वैसे तो सर ने कहा था कि ज़्यादा परिचय मत देना, पर भी हमें सर का परिचय करना है क्योंकि उनके साथ इतनी उपलब्धियां हैं, इतने अचीवमेंट्स हैं, तो हमारे दोस्तों के साथ ये साझा करना ज़रूरी है। सो डॉक्टर शशांक जोशी, आप प्रख्यात एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मुंबई के प्रसिद्ध कॉरपोरेट अस्पतालों में आपकी सेवा देते हैं। अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो डॉक्टर शशांक जोशी ने MD के बाद DM, DM के बाद FRCP के बाद FACP USA इतनी पदवियाँ प्राप्त की है। आप पास्ट डीन रह चुके हैं इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस के, आप पास्ट प्रेसिडेंट है एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया, जिसे API कहते हैं। दोस्तों, API की एक टेक्स्ट बुक भी आती है जिस जो हम मेडिकल स्टूडेंट अक्सर पढ़ते हैं, तो सर ने लिखे हुए पाठों का हम अध्ययन करते हैं, उसको बार बार पढ़ते हैं, रटते हैं, तो हमारी ये इट्स आवर प्रिविलेज सर टू बी विथ यू। और भी आगे कहूँ तो सर पास्ट प्रेसिडेंट है इंडियन थायरॉयड एंड एंडोक्राइन सोसाइटी के, और आप इमेरिट्स एडिटर है जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया के। और दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर शशांक जोशी, इन्होंने कोरोना काल में, कोरोना महामारी में जो है दौरान महाराष्ट्र की टास्क फोर्स के भी वो सदस्य रह चुके हैं। और पुरस्कारों की बात करें तो डॉक्टर साहब को 2014 साल को हमारे भारत सरकार ने पद्मश्री खिताब से नवाजा है, और 2012 में सर को अमेरिका में इंटरनेशनल क्लिनिशियन ऑफ द ईयर 2012 इस पुरस्कार से सम्मानित किया, और IMA यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा भी सर का सत्कार सम्मान हुआ है। IMA डॉक्टर ऑफ डिकेड अवार्ड से सर का गौरव हुआ है। तो सर, फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है, और आपका जो है समय का सदुपयोग करते हैं। और सर, ये थायराइड क्या है, इसके बारे में कृपया हमें बताएं, मतलब कहाँ होता है, क्या काम है इसका, इसके बारे में थोड़ा हमें प्लीज जानकारी दीजिए।
1: सो धन्यवाद निखिल जी। थायराइड ये हमारे गले के सामने ग्रंथि रहती है, बटरफ्लाई शेप ग्रंथि रहती है, और ये ग्रंथि में से ऊर्जा तैयार होने का एक हार्मोन होता है जिसका T3 और T4 नाम होता है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो हार्मोन कंट्रोलर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में, उससे कंट्रोल होता है जहाँ पे TSH हार्मोन तैयार होता है। और थायराइड ग्रंथि जो होती है छोटी सी ग्लैंड होती है गले के सामने, और थायराइड हार्मोन जो तैयार होता है उसे हर पेशी को ऊर्जा मिलती है। जैसे हमारे मोबाइल को बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर के हर पेशी को चार्ज देने का काम, जो मोबाइल चार्जिंग होता है वैसे ही अपने हर पेशी या सेल को चार्जिंग देने का काम थायराइड हार्मोन का होता है। और थायराइड हार्मोन जो तैयार होता है उसके लिए आयोडीन ट्रैप होता है, आयोडीन और प्रोटीन टायरोसिन बन के वो उसका जब सम्मिश्रण होता है तब वो T3 या T4 हार्मोन तैयार होता है। T4 हार्मोन जाके हमारे पेशी में T3 तैयार होता है उसका, और T3 हार्मोन से हमारे शरीर के हर पेशी को ऊर्जा मिलती है। तो ये शरीर के ऊर्जा या एनर्जी का हार्मोन है ये, और हर पेशी को ऊर्जा मिलनी बहुत जरूरी होती है, इसलिए थायराइड हार्मोन हमारे शरीर दृष्टि में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है ऊर्जा मेंटेन करने के लिए, स्फूर्ति मेंटेन करने के लिए, एनर्जी मेंटेन करने के लिए। ये थायराइड हार्मोन का संतुलन रहना बहुत जरूरी है।
0: धन्यवाद डॉक्टर साहब, एकदम सरल भाषा में आपने बताया थायराइड्स का काम। दोस्तों, हम एक छोटी सी विज्ञापन के लिए विश्रांति लेते हैं, और सर के साथ जो है बातें जारी रहेगी। सुनते हैं एक छोटा सा विज्ञापन।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
3: दोस्तों, बातें चल रही है पद्मश्री डॉक्टर शशांक जोशी, इनके संग उनका संग और सानिध्य हमें आज मिल रहा है क्योंकि आज जो है विश्व थायराइड दिवस है जो कि हम 25 मई को मनाते हैं। तो डॉक्टर शशांक, अगला मेरा सवाल ये है कि ये विश्व थायराइड दिवस क्यों मनाते हैं और हर एक साल का कुछ थीम होता है, घोष वाक्य होता है, तो इस साल का क्या स्पेशल थीम है उसके बारे में कृपया हमें बताएं।
4: तो थायराइड दिवस का एक प्रमुख कारण है कि थायराइड के अलग अलग बीमारियों के बारे में सब लोगों को, आम लोगों को जानकारी मिले। और थायराइड के अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे जब थायराइड काम नहीं करता है तो हम उसको हाइपोथायरॉयडिज्म कहलाते हैं, जब थायराइड का काम ओवर टाइम काम करता है तो उसको हाइपर थायरॉयडिज्म कहलाते हैं, थायराइड ग्रंथि को जब सूजन आती है तो उसको हम गॉइटर कहलाते हैं, और कभी कभी थायराइड ग्लैंड होती नहीं है, उसका फंक्शन होता ही नहीं है तो फिर ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता है, क्रेटिनिज्म करके बीमारी आती है। ये पहले आयोडीन डेफिशिएंसी के जमाने में काफी दिखता था। तो ब्रेन और थायराइड का जो कनेक्शन है ये साल की ध्येय और थीम है, और थायराइड की बारे में जानकारी देना, ये हर साल हम थायराइड के ये विशेष दिन पे काम करते हैं। तो जागरूकता रहना बहुत जरूरी है। आपको यदि हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी होगी तो आपको थकान लग सकती है, वजन बढ़ सकता है, महिलाओं में उसका प्रमाण ज्यादा होता है, और फिर थायराइड की T3 T4 TSH की जांच करनी पड़ती है और उससे आपको पता चलता है कि थायराइड की बीमारी है। वैसे ही जब हाइपर थायरॉयडिज्म होता है यानी थायराइड की ग्लैंड ओवर टाइम काम करती है तब भी हम T3 T4 TSH की करते हैं, उसमें वजन कम होता है, हार्ट बीट फास्ट होती है, पैनिक अटैक होता है, नींद नहीं लगती है, तो ये हाइपर थायरॉयडिज्म

0: के लिए भी हम ब्लड टेस्ट से जांच करके वो उसकी टेस्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि थायराइड ग्लैंड की जो बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होती है नॉर्मल रहती है, लेकिन गले के सामने सूजन रहती है, उसको हम गॉइटर बोलते हैं। तो कभी कभी छोटे छोटे नोड्यूल रहते हैं, कभी कभी पूरे नोड्यूल रहते हैं, तो वहां पे थायराइड का स्कैन करना पड़ता है। कभी कभी हम सोनोग्राफी करते हैं, कभी कभी हम न्यूक्लियर स्कैन करते हैं और वहां से फिर विश्लेषण करते हैं, दूरबीन परीक्षा करते हैं नीडल डाल के कि थायराइड ग्रंथि में कोई कैंसर नहीं है, दूसरी कोई बात नहीं है, वो भी हम चेक करते हैं। आयोडीन का जो हमारे जो हम नमक लेते हैं उसका आयोडीनाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे थायराइड की जो ग्रंथि की सूजन की प्रॉब्लम जिसको गॉइटर बोलते हैं वो काफी हद तक कम हुई थी, और उसकी वजह से अभी पहले जैसे हमको थायराइड की ग्रंथि की ग्लैंड दिखती थी उसका काफी अभी कम हो गया है प्रमाण, क्योंकि हमने अभी जो हमारे रोज के खान पान में हम जो आयोडाइज सॉल्ट की इस्तेमाल करते हैं वो आयोडीन से थायराइड ग्रंथि की ग्रोथ में बहुत फायदा होता है, सूजन होती नहीं है, उसकी डेफिशिएंसी नहीं रहती है। और ये हमारे आईक्यू और ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी है, हमारे जो शिशु है यंग बच्चे हैं उनमें भी आयोडीन का प्रमाण सही रहना बहुत जरूरी है, गर्भवती स्त्रियों में भी आयोडीन का प्रमाण रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये साल की जो थीम है ये अवेयरनेस बढ़ाना, थायराइड का एजुकेशनल कनेक्ट रखना और थायराइड के ब्रेन की समस्याओं में जो ब्रेन कनेक्ट है आईक्यू कनेक्ट है उसके ऊपर जागरूकता करना, यही ध्येय है वर्ल्ड थायराइड दिवस का। निखिल जी
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने कई बीमारियों के नाम लिए हैं, तो उन बीमारियों के बारे में भी हमें थोड़ी जानकारी लेनी है, और ये कारण क्यों है थायराइड की बीमारी, ये भी हमें सर से जानना है, समझना है। उससे पहले सर को किशोरदा और आरडी बर्मन जी के गीत बहुत पसंद आते हैं, तो आइए उन्हीं के कॉम्बिनेशन में, किशोरदा की आवाज़ में और अलग अलग गीत सुनने की हम कोशिश करते हैं, और सुपरहिट गीत सुनते हैं, और उसके बाद पद्मश्री डॉक्टर शशांक जोशी के संग हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी।

0: जी हाँ दोस्तों, आज सभी के लिए सरप्राइज़ है। हमारे म्यूज़िक कैफ़े कार्यक्रम में हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर शशांक जोशी, जो कि प्रख्यात एंडोक्रेनोलॉजिस्ट है, ना कि सिर्फ मुंबई में, पूरे देश में। तो उनके साथ बातचीत चल रही है। डॉक्टर शशांक, अगला जो सवाल है हमारा व्हाट्सएप पे आया है, हमारी जो श्रोता हैं उर्मिला निदसुरे, तो उनका सवाल है कि आजकल बहुत यंग जनरेशन में TSH बिगड़ा हुआ दिखता है, और तो उसके बारे में उनका अगला सवाल है कि थायराइड एंटीबॉडीज़ का क्या इलाज है। तो थोड़ा सा मैं हमारे दोस्तों को समझने के लिए या ये भी आपसे पूछना चाहूँगा कि ये T3, T4, TSH क्या है, ये भी बता के जो उर्मिला है उनका सवाल का कृपया जवाब दीजिए।
1: निखिल जी, उर्मिला जी जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत सही प्रश्न पूछा। आपने जैसे कहा कि थायराइड की एक एंटीबॉडी होती है, इसको कभी कभी एंटीबॉडी यानी आ बेल मुझे मार, यानी हम हमारे शरीर में एंटीबॉडी कब तैयार करते हैं कि जब कोई कीटाणु आता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट कभी कभी हमारी इम्यूनिटी अगेंस्ट हो जाती है और हम एंटीबॉडी तैयार करते हैं, उसको ऑटो इम्यून थायरॉइडिटिस या हाशिमोटो थायरॉइडिटिस कहला जाता है और उससे थोड़ा TSH बढ़ता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जीवन दयनीय में हमारे इसमें आने वाला स्ट्रेस, और ये वुमन में ज्यादा होता है, महिलाओं में ज्यादा होता है, 8:1 महिलाओं में उसका प्रमाण ज्यादा होता है, क्योंकि उनको अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस होते हैं। घर काम का स्ट्रेस रहता है, बच्चों का या घर के फैमिली मेंबर्स का स्ट्रेस रहता है, फिर उनको काम काज का स्ट्रेस रहता है, तो वो सुपर वुमन होने के कारण काफी बार उनके शरीर के थायराइड के अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयार होती है और ये एंटीबॉडी की हानि होने से TSH की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये अर्ली साइन है कि थायराइड की बीमारी हो सकती है, और फिर वजन बढ़ता है, चेहरे पे सूजन आती है, स्किन ड्राई होता है, हेयर फॉल होता है, और कभी कभी महिलाओं में उनकी जो मासिक पीरियड्स होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। तो ये सब उसके लक्षण होते हैं और इसकी एकदम सिंपल ट्रीटमेंट है। एक तो योग, आहार, व्यायाम कर सकते हैं इसके लिए, और उसके साथ ही थायराइड की एक छोटी सी गोली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के सुपरविजन में कभी कभी देनी पड़ती है। तो इसलिए उर्मिला जी, आपका प्रश्न बहुत सही था कि TSH की प्रमाण अभी बढ़ रहा है, एंटीबॉडी का भी प्रमाण बढ़ रहा है, और उसका प्रमुख कारण अपने दैनंदिन जीवन में जो तनाव है, मानसिक तनाव, फिजिकल तनाव, उसके वजह से होता है। इसलिए एक संतुलित आहार, व्यायाम, योग, मन शांति, ये बहुत जरूरी है, और नींद, और ये सब हम संतुलित रखते हैं तो उसका काफी फायदा होता है। लेकिन गर्भवती स्त्रियों में या जिनको गर्भवती रहना है यानी प्रेगनेंसी रखनी है, उनमें ज्यादा सतर्कता रखनी पड़ती है।

0: क्योंकि यदि यहाँ पे टीएसए ज्यादा रहता है तो कभी कभी बच्चे को हानि हो सकती है, इसलिए उसका स्क्रीनिंग करके त्वरित इलाज करना बहुत जरूरी रहता है। तो आपके प्रश्न की मैं सराहना करता हूँ और आई थिंक आपको एक जानकारी मिलती है कि थायराइड अवेयरनेस जो आज का ध्येय है उसमें टीएसएच का स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है।
1: बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। दोस्तों आपके जो प्रश्न है हमारे व्हाट्सएप नंबर 8657661071 पर, मैं फिर एक बार हमारा व्हाट्सएप नंबर दोहराता हूँ 8657661071 पर आपके जो प्रश्न है थायराइड के विषय में वो ज़रूर हमारे विशेषज्ञ प्रख्यात एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर शशांक जोशी को पूछ सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, छोटा सा विज्ञापन सुनते हैं और फिर डॉक्टर साहब से जो है वो बातचीत हमारी जारी रहेगी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: दोस्तों, म्यूजिक कैफे कार्यक्रम में हमारे कैफे में आज प्रख्यात एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर शशांक जोशी है। डॉक्टर साहब, और एक सवाल आया है फिरोज सिंगनपोरिया इनका, कि जो शराब है, शराब से थायराइड के ऊपर कुछ परिणाम हो सकता है क्या, उसके ऊपर उनका सवाल है, तो कृपया उसके बारे में हमें बताइए।
4: शराब से तो डायरेक्ट कोई ऐसा इम्प्लीकेशन होता नहीं है, लेकिन शराब की वजह से हार्ट का जो रिदम होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन करके हृदय विकार के रिदम की एक बीमारी होती है, एक टाइप का अरिथमिया यानी हृदय का जो ठोके होते हैं उसकी एक बीमारी होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो सकती है। और थायराइड जब ज्यादा काम करता है, हाइपरथायरॉइडिज्म, तब भी उनको एट्रियल फिब्रिलेशन होने की संभावना रहती है। तो हार्ट रेट पे फर्क पड़ता है शराब पीने से, तो हम शराब पीना अवॉइड करना करते हैं थायराइड के मरीजों में, महिला हो पुरुषों में। हम बोलते हैं कि उनको अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका हार्ट रेट पे असर हो सकता है। और एट्रियल फिब्रिलेशन नामक एक एरिथमिया होता है, रिदम डिसऑर्डर होती है हार्ट की रिदम की, उसमें गड़बड़ हो सकती है।
3: डॉक्टर साहब, और यही थोड़ा सवाल है कि आजकल की युवाओं में थायराइड से जुड़ी परेशानियां, कहिए समस्याएं, क्यों देखी जा रही है, या फिर इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, कृपया इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए।
4: तो आपका बहुत सही प्रश्न है निखिल जी, कि एक 50 साल पहले हमारे यहाँ पे गॉइटर के बेल्ट होते थे, यानी थायराइड के ग्रंथि के सूजन के बेल्ट, क्योंकि तब आयोडीन डेफिशिएंसी थी। और तब भारत सरकार की जो मुहिम है आयोडीन सफिशिएंसी की वजह से अभी पूरे भारतवर्ष में गॉइटर बेल्ट लगभग निकल गए हैं, तो आयोडीन सफिशिएंट एनवायरनमेंट में। लेकिन उसके साथ ही पोल्यूशन, हमारे जीवन में आने वाला स्ट्रेस, ऑटो इम्यूनिटी, ये सबका प्रमाण बढ़ने लगा है। और अभी हम देखते हैं कि ऑटो इम्यूनिटी की पीक है, तो ऑटो इम्यून हाइपोथायरॉयडिज्म या ऑटो इम्यून हाइपरथायरॉयडिज्म, ये बीमारियों का प्रमाण अभी बढ़ रहा है, और थायरॉयड कैंसर का भी प्रमाण बढ़ रहा है। तो ये अभी आयोडीनाइजेशन का जो प्रॉब्लम था 50 साल पुराना, वो निकल गया है। और हमारे जीवन शैली में और हमारे जीवन में आने वाली दिन ब दिन बढ़ने वाली जो समस्याएं हैं, मानसिक तनाव है, पोल्यूशन है एनवायरमेंटल, इसके वजह से थायराइड की बीमारियों का अभी जो ये है बढ़ रहा है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि अभी 50 साल पहले हमारे पास सूक्ष्म ब्लड बायोकेमिस्ट्री टेस्टिंग नहीं था, अफोर्डेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, अभी हमारे पास अफोर्डेबल और एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी की वजह से ब्लड टेस्टिंग अवेलेबल है। छोटे छोटे गांवों में भी हम थायराइड की जांच कर सकते हैं,

0: और उसकी जो टेस्ट की कॉस्ट है वो भी काफी हद तक कम हो चुकी है। तो आम आदमी में स्क्रीनिंग बढ़ गया है, अवेयरनेस की वजह से स्क्रीनिंग बढ़ा है, इसलिए डायग्नोसिस भी बढ़ा है। तो कई लोगों को पता भी नहीं चलता था जब तक उनको सीवियर या तीव्र बीमारी होती थी कि उनको थायराइड की बीमारी है, लेकिन अभी ये ब्लड टेस्ट होने की वजह से जल्दी स्क्रीन कर पाते हैं डॉक्टर, और फिर थायराइड की जो डिटेक्शन है वो अर्ली स्टेज में होना संभावित है, क्योंकि हमारे पास अफोर्डेबल एक्सेसिबल डायग्नोस्टिक ब्लड टेस्ट अवेलेबल है अभी।
1: बहुत बढ़िया सर, सर की सरल बातें हमें थायराइड के बारे में और ज्ञान दे रही है, और आपके प्रश्न भी अलग-अलग पहलू जो है थायराइड के विषय के उस वजह से हमें समझ में आ रहे हैं। तो और भी कई सारे जो है सवाल व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो अगला सवाल शुभदा का है कि थायराइड के लिए कुछ एक्सरसाइज है क्या उसके बारे में। और मेरा भी अगला सवाल यही था कि ये थायराइड वाली बीमारियों से कैसे बचाव किया जाए डॉक्टर साहब।
0: तो थायराइड बीमारियों के कोई इसमें स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन शुभदा जी आपका प्रश्न बहुत सही है कि योग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी हम जागतिक एक 10-20-25 दिन में ही जागतिक आरोग्य दिन के साथ ही जागतिक योग दिन जो हमारे माननीय पंत प्रधान है उनके निगरानी में करने वाले हैं, तो योग का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है ऑटो इम्यूनिटी कम करने में, और इसलिए योग का एक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है थायराइड की बीमारी में उसको हैंडल करने में, ईज आने में। तो वो एक होता है फिजिकल एक्टिविटी और वजन कम करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, 10,000 स्टेप्स करना वो भी बहुत जरूरी है, और योग में पर्टिकुलरली प्राणायाम उसके साथ ही बाकी को जो टेस्टिंग चलती है वो भी करना बहुत जरूरी है, सिग्निफिकेंस उसका है। तो योग के साथ ही फिजिकल एक्टिविटी और 10,000 स्टेप्स इसका योगदान है। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस जिनके वजन ज्यादा रहता है उनमें करने की बहुत जरूरी रहती है।
1: बहुत बढ़िया सर, दोस्तों हमें टिप्स मिल रही है आपकी ही प्रश्नों के वजह से। तो सर एक थोड़ा सा उप प्रश्न ऐसा पूछना था कि मतलब जिनको थायराइड की गोली चल रही है वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जिनको नहीं है वो भी प्रिवेंटिव ये सब
0: हाँ
1: कर
0: जी, हाँ
1: सकते हैं
0: जी,
1: ना।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ
1: ओके
0: जी।
1: ओके, दोस्तों डॉक्टर साहब के बाद साथ यही बातें जारी रहेंगी, और एक सुरीला गीत सुनते हैं महाराष्ट्र भूषण आशाताई और किशोरदा की आवाज़ में, और राहुल देव बर्मन जी का संगीत है अगले गीत में। तो जी हाँ, हम सब साथी हैं तो हमें लाइफ में आगे चलते रहना है। तो आइए कुछ ऐसा ही संदेश देता हुआ अगला गीत।
2: अरे

0: जी हाँ दोस्तों, आज हमारे म्यूज़िक कैफ़े पर जो है पद्मश्री डॉक्टर शशांक जोशी है, जो कि प्रख्यात एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, ना कि सिर्फ मुंबई में, पूरे देश में। डॉक्टर साहब, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूँ। और हमारे श्रोताओं के बहुत सारे प्रश्न है, तो उनके और थोड़ा रुक करते हैं। तो संतोष शुक्ला, इनका प्रश्न है कि सबसे पहले तो आपको नमस्कार और शुभकामनाएं दी है कि, और अगला सवाल ऐसा है कि हम सब लोग आयोडाइज नमक खा रहे हैं, इसके बावजूद किसी भी एज में थायराइड हो रहा है, हम जीवन भर हमें दवाई लेनी पड़ रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर दवाइयां न ली जाए तो सिर्फ आयोडाइज नमक से कंट्रोल रहेगा क्या? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, मेडिसिन नहीं ली गई तो कितना रिस्क हो जाएगा और क्या घातक परिणाम हो सकते हैं, इसके ऊपर भी उन्होंने मार्गदर्शन करने को कहा है। और साथ ही और एक प्रश्न है, तो अगर मैं रिपीट भी बाद में करूँगा चाहे तो ठंडा गर्म खाने पीने से भी कुछ ग्लैंड पर असर पड़ता है क्या, ऐसा उनका सवाल है। तो क्या कहेंगे डॉक्टर साहब?
1: शुक्ला जी, आपका प्रश्न बहुत सही है कि आयोडीन होने के बावजूद भी हमको थायराइड बीमारियां हो रही है। तो आयोडीन का प्रमुख, आयोडीनाइजेशन का प्रमुख जो ध्येय था वो था ग्वाइटर को निकाल देना, यानी थायराइड ग्रंथि की सूजन, उसको एलिमिनेट करना। उसका तो सक्सेस मिल चुका है, भारत सरकार को भी, इंडिविजुअल लेवल पे भी। लेकिन उससे थायराइड की होने वाली हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारियां प्रिवेंट नहीं होती है। तो यदि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म की बीमारी है तो आपके थायराइड का एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ आप सुपरविजन में आपको पूरी लाइफ एक दवाई लेनी पड़ती है जिसका नाम होता है थायरोक्सिन। ये एकदम सिंपल गोली है, पूरी लाइफ लेनी है। उसका डोज लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है और उसकी हर 3-4 महीने में टेस्ट करके करना पड़ता है। गर्भवती स्त्री होगी जिनको थायराइड होगा तो हर महीने में टेस्ट करनी पड़ती है और उसकी मात्रा जो है नॉर्मल रेंज में रखनी बहुत जरूरी होती है। उसके साथ ही हाइपर थायरॉयडिज्म की जो बीमारी है जहाँ थायरॉयड ग्लैंड ओवर टाइम काम करती है, उस बीमारी के लिए नॉर्मली हम जो गोलियां देते हैं ये 1.5 से 3 साल देनी पड़ती है। कभी कभी उसका रिलैप्स रिकरेंस होता है तो आयोडीन का टीपा भी पिलाते हैं हम, रेडियो एक्टिव आयोडीन। यहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन का इस्तेमाल होता है पीसफुल पर्पजेस के लिए और कभी कभी हम सर्जरी भी करते हैं। लेकिन सर्जरी और आयोडीन का टीपा ये रिजर्व ऑप्शन होता है, नॉर्मली एंटी थायरॉयड की दवाइयां देके हम मिटा सकते हैं। लेकिन

0: हाइपरथायरॉयडिज्म में कभी कभी 5 साल में उसका रेमिशन या 3 साल में रेमिशन पॉसिबल है। तो ये भी आपका जो प्रश्न है कि सबको पूरी लाइफ दवाई लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। थायराइड का जो रोग निदान होता है उसके अनुसंग आपके विशेषज्ञ एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आपको बताएंगे कि थायराइड की बीमारी के लिए लाइफ लॉन्ग दवाई देनी है कि थोड़े वक्त के लिए दवाई देनी है, लेकिन उसका मेडिकल सुपरविजन होना ये बहुत अनिवार्य है। उसके साथ ही आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा है कि हमको और क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें रेगुलरली जांच करके आपके डॉक्टर के सलाह के अंडर एक निगरानी रख के राइट करेक्ट डोज लेना बहुत जरूरी है। और ये दवाइयों का बहुत ज्यादा भी एक्सेस होना नहीं चाहिए, बहुत कम भी लेना नहीं चाहिए, करेक्ट डोज लेना बहुत जरूरी रहता है और उसके लिए जांच करनी भी उतनी जरूरत रहती है। जब गॉइटर होता है या बार बार घाट आती रहती है तो कभी कभी हमको शस्त्रक्रिया भी करनी पड़ती है, क्योंकि वो नोड्यूल्स या थायराइड की जो ग्रंथि की सूजन है उसकी कभी कभी सर्जरी करने के ऊपर भी हमको ये प्रयास करना पड़ता है, वहां पे भी निगरानी रखनी पड़ती है। और कई कई लोगों में हम सर्जरी अवॉइड भी कर सकते हैं, बट आयोडीन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो आयोडीन ये थायराइड का क्यूर नहीं है, आयोडीन ये गॉइटर न होने का एक मेजर तरीका है, पब्लिक हेल्थ तरीका है। हमारे नमक में आयोडीन डालने से जो गॉइटर का जो बड़ी समस्या थी, ये ऑलमोस्ट लगभग पूरे दुनिया में हम भारतवंश में प्राउड फील करते हैं कि हमने ऑलमोस्ट इसको नो कर दिया है। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना, लेकिन इसमें थायराइड बीमारियां होने का संभव टलता नहीं है, लेकिन सतर्कता रहनी बहुत जरूरी होती है। तो जांच करनी रहती है और हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड थायरॉयड नोड्यूल्स, ये तीनों चीज का एक विजिलेंस मेंटेन करना, विजिल मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है।
1: डॉक्टर साहब, एक छोटा सा विज्ञापन सुनते हैं और फिर से आपके संग जो बातचीत है वो जारी रहेगी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: जी हाँ दोस्तों, म्यूजिक कैफे में बातचीत चल रही है जागतिक थायराइड दिवस पर और प्रख्यात एंडोक्राइनोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर शशांक जोशी हमारे संग है आज के म्यूज़िक कैफ़े कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब, थोड़ी सी दिल में शिकायत ये भी होती है कि ये दवाई लाइफ टाइम ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी क्या, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? और एक प्रश्न आया है कि प्रिवेंटिव मेथड्स, मतलब कंट्रोल में रखने के लिए क्या कुछ प्रिवेंटिव मेथड्स है? अंधेरी से अनुपा खारकर, इनका ये सवाल है।
2: तो अनुपा जी खारकर ताई, हम आपको बोलना चाहते हैं कि प्रिवेंट करने के लिए थायराइड की जांच करना रेगुलरली बहुत जरूरी है। थायराइड का एक स्पेशलाइज डाइट नहीं होता है, कभी कभी जब तो लोगों को आयोडीन फ्री डाइट का एक सलाह दी जाती है। आयोडीन रिच फूड जो होते हैं जैसे आयोडाइज नमक होता है, कोबी फ्लावर, सोया, प्रॉन शेल फिश क्रैब्स, ये थोड़ी थोड़ी जो आयोडीन रिच होता है वो कभी कभी वैद्यकीय सलाह में हम उनको अवॉइड करने को कहते हैं, पर्टिकुलरली जब हमको थायराइड का स्कैन करना होता है कैंसर के सिनेरियो में। लेकिन अक्सर इसमें डाइट की क्या मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। थायराइड ग्रंथि का जो संतुलन है उसमें एक हेल्दी कार्बोहाइड्रेट फैट नियंत्रित प्रोटीन युक्त संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। खान पान वक्त पे करना, सही करना, थोड़ा सा कम खाना, 7 घंटे नींद लेना, उसके साथ ही व्यायाम और योग करना, मन शांति रखना, ये सब उसके अनिवार्य अंग है, पूरा एक लाइफस्टाइल थायराइड के प्रोग्राम के लिए, और उसका एक योगदान होता है। लेकिन उसके बियॉन्ड थायराइड में बहुत ज्यादा कुछ डाइट का कंट्रीब्यूशन नहीं है आयोडीन छोड़ के। तो गर्भवती स्त्रियों में और जो बालकों को माये रहती है जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं वहां पे हमको आयोडीन ज्यादा देना या उसका रिक्वायरमेंट बढ़ाना बहुत जरूरी रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हमको उसका एक गाइडलाइन रखनी चाहिए।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर।

साहब, इस मोड़ पर एक छोटा सा किशोर दा का गीत सुनते हैं फिल्म पड़ोसन से, और आप सभी के जो जो प्रश्न है वो कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर साहब से उसका समाधान हम ले पाए। तो आइए सुनते हैं, हम सभी को डॉक्टर साहब से कुछ कहना है, डॉक्टर साहब को भी आज के दिन हमें कुछ कहना है, तो उसी विषय से जुड़ा ये गीत।

0: जी हाँ दोस्तों, आज हम जागतिक थायराइड दिवस मना रहे हैं जो कि 25 मई को होता है। और डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर शशांक जोशी हमारे संग है, प्रख्यात एंडोक्रेनोलॉजिस्ट है। तो डॉक्टर साहब, अगला सवाल ये है, मुंबई के विक्रोली ईस्ट से प्रथमेश डोंगरे का ये सवाल है कि अगर हमें थायराइड के लक्षण हमें पता है तो उसका इलाज क्या है, इस बारे में ऐसा उनका प्रश्न है, क्या कहेंगे?
1: तो निखिल जी, प्रथमेश जी का धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सही प्रश्न उन्होंने पूछा। यदि हमको थायराइड के लक्षण हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड ग्रंथि की काम नहीं होता है, तो फिर पूरे लाइफ हमको एक थायरोक्सिन करके गोली लेनी पड़ती है। कभी 75, कभी 100, कभी 125 मात्रा में ये गोली लेनी पड़ती है। ये पर केजी बॉडी वेट से डोज उसका होता है। हर 3 महीने में हमको TSH की जांच करनी पड़ती है, और कभी कभी ठंड मौसम में उसका रिक्वायरमेंट

0: थायराइड की लेके 1.5 से 3 साल में कर सकते हैं। हाइपर थायराइड में एक चीज जिक्र करना, हम बताया नहीं पूरे प्रोग्राम में कि थायराइड में आके बाहर आ जाती है, इसको हम थायराइड आई डिसीज बोलते हैं। और उसके लिए अभी नई नई दवाइयां, स्टीरॉयड और इम्यूनोलॉजिकल दवाइयों का भी प्रयोग आता है, आके डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। और स्मोकर्स में इसका प्रमाण ज्यादा होता है, मेन में उनका प्रमाण ज्यादा होता है, तो थायराइड आई डिसीज के लिए सतर्क रखना भी बहुत जरूरी रहता है। तो हाइपर थायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण होंगे तो ये दोनों बीमारियों के लिए हमारे पास क्लियर कट इलाज है। उसके बियॉन्ड यदि सिर्फ गांठ है, थायराइड की गांठ है, डिफ्यूज गांठ या नोड्यूलर गांठ, तो वहां पे कभी कभी शस्त्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी आयोडीन के टीपे पिलाए जाते हैं, और सबका दवाइयों का इलाज है। तो थायराइड ऐसी ग्रंथि है कि जिसके बहुतांश बीमारियों में हमारे पास ट्रीटमेंट है, लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में अनफॉर्चुनेटली हमको लाइफ लॉन्ग दवाई देनी पड़ती है। और ये दवाई हमारे शरीर की जो केमिकल है, जो हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि थायराइड हार्मोन बनाती है, यही ग्रंथि हम टैबलेट मार्फत देते हैं, और ये सस्ती टैबलेट है, पूरी लाइफ खानी पड़ती है, उसका डोज मात्र हर 3-6 महीने में टेस्ट करके, जांच करके एडजस्ट करना पड़ता है, हवामान के, वेट के और टेंशन के मुताबिक, डॉक्टर के सलाह के अंदर उसका डोज का थोड़ा एक एडजस्टमेंट करना बहुत जरूरी होता है।
1: बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी जानकारी और सरल भाषा में आप हमें समझा रहे हैं। घड़ी में ठीक 12:56 हो चले दोस्तों, तो डॉक्टर साहब को आखिरी 2 सवाल पूछता हूं। डॉक्टर साहब, स्वस्थ थायराइड के लिए कोई टिप्स हमें दीजिए, और जाते जाते हमारे दोस्तों के लिए कुछ टेक होम मैसेज, एक संदेश दे दीजिए।
0: तो निखिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, और सब श्रोताओं का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने थायराइड अवेयरनेस के हमारे ये कार्यक्रम में जुड़ के थायराइड अवेयरनेस की जो एक ड्राइव है, मुहिम है, वो आप कर रहे हैं। थायराइड जो बीमारी है, हमारी जो ग्रंथि है, ऊर्जा की ग्रंथि है जैसे मैंने बताया, और यह हमारे शरीर एस्टी में, हमारे बॉडी में एनर्जी बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। थायराइड की मात्रा अभी थोड़ी बढ़ रही है क्योंकि टेस्टिंग अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हुआ है, तो जहां जहां हमको सस्पिशन होगा, जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड है, महिला है, गर्भवती रहना चाहती है, तो थायराइड की जांच करना बहुत जरूरी होती है। और हाइपोथायराइडिज्म होगा तो पूरा लाइफ दवाई लेनी है, हाइपर होगा तो 1.5 साल से 3 साल दवाई लेनी है। बहुत कम लोगों को सर्जरी या आयोडीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। थायराइड का कैंसर भी प्रमाण बढ़ रहा है, तो जब भी आपको कोई डाउट होगा तो T3, T4, TSH की टेस्ट, थायराइड की एंटीबॉडी की टेस्ट और एक सोनोग्राफी, ये कर सकते हैं हम। और फिर उसका वैद्यकीय सलाह के लिए थायराइड के जो विशेषज्ञ हैं, जिनको एंडोक्रिनोलॉजी बोला जाता है, उनके उनसे सलाह लेके योग्य मार्गदर्शन लेना बहुत जरूरी है। अपने आप हम ट्रीट नहीं करें, लेकिन संतुलित आहार, व्यायाम, योग, मन शांति, तंबाकू या टोबैको का सेवन नहीं करना, दारू का सेवन नहीं करना, और अच्छी 7-8 घंटे नींद लेना, ये सब महत्वपूर्ण योगदान देते हैं डाइट, थायराइड प्रिवेंशन में भी और थायराइड ट्रीटमेंट में भी। थायराइड ऐसी बीमारी है, इंक्लूडिंग थायराइड कैंसर, जहाँ पे काफी अच्छी तरह के नई नई ट्रीटमेंट ऑप्शंस और दवाइयाँ अवेलेबल है, अफोर्डेबल भी है, एक्सेसिबल भी है, तो यह बहुत जरूरी है। आज का जो जागतीय थायराइड दिन है, वहां पे हमको जो हमारे शिशु बच्चों में आयोडीन डेफिशिएंसी होनी नहीं चाहिए, उसके ऊपर एक फोकस है। ब्रेन डेवलपमेंट में, IQ में आयोडीन का बहुत बड़ा योगदान है, और इसलिए हमको एक थायराइड अवेयरनेस रहना, और जहां जहां डाउट हो वहां पे खून की जांच करना और ब्लड टेस्ट करना, सोनोग्राफी करना, ये आप कभी भी हिचकिचा नहीं, नहीं आप कर देना, क्योंकि वो फिर जाके फिर वैद्यकीय सलाह ले लेना, क्योंकि ये ट्रीटेबल बीमारी है, इसका इलाज है, और हमको इलाज करना बहुत जरूरी है।
1: धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने आपके व्यस्त स्केड्यूल से कीमती समय निकाल कर हमें जानकारी दी, हमारा मार्गदर्शन किया, पथ दर्शन किया, तो आपको धन्यवाद देते हैं, और आगे की आपकी जो ज़िंदगी के लिए हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, और ढेर सारा याद प्यार आपके लिए, तो धन्यवाद आपका समय देने के लिए डॉक्टर साहब, आगे भी आप हम आपकी सलाह लेंगे, तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ अस।
0: धन्यवाद निखिल जी, आपका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप एक जन आंदोलन में एक मुहिम रखे है हेल्थ अवेयरनेस के लिए, थायराइड अवेयरनेस के लिए, आपका धन्यवाद देता हूँ, जय हिंद।
1: धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर शशांक जोशी। ठीक 1 बजे हम सुनेंगे

समाचार और 1:05 पे हमारा जो कार्यक्रम है हिट एंड हॉट जो लिसनर्स चॉइस का है वो हम सुनेंगे। तो अभी कुछ ही पलों में मराठी में समाचार छत्रपति संभाजीनगर से, तो आइए सुनते हैं समाचार।

आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम हिट एंड हॉट में। मैं हूँ आरजे डॉक्टर निखिल विद्याहरेंद्र शास्ने, और आपको तो पता है कि ये आपका कार्यक्रम है और गीत का चयन भी आप ही करते हैं। पर क्या आज आपका मूड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो लंबे लंबे गीतों की आ रही है, कम से कम 5 मिनट के गीत है सब। तो ऐसे में हम ज़्यादा गीत नहीं शामिल कर पाएंगे, पर कोई बात नहीं, आप सभी के नाम ज़रूर हम शामिल करने वाले हैं। तो प्रणव शिंदे, राजेंद्र परमार, अंकित, हीरामणि वर्मा, विजेंद्र घाटो अकोला से, महेश बोहरा, राजेंद्र जुठानी, फिरोज सिंगनपोरिया, शुभदा, संतोष कुमारी शुक्ला, महर अरोरा श्रीनगर से, राकेश माथुर पूना से, और संदीप कुमार है हमारे जो दोस्त हैं इंदौर से, अजय साखरे, जलगांव से हमारे दोस्त जितेंद्र पाटिल है, पंकज मोहोड़ चिंचोड़कर कहिए, बाबा दादर से, जलगांव से आर्यन सोमवंशी, और भी कई सारे हमारे दोस्त जुड़ चुके हैं। सभी को शुभकामनाएं, सबके आप सभी के मैसेज संदेश हमें मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, ढेर सारा याद प्यार आप सभी को। वाडवन से हमारी जो दोस्त है रजनीकांत पाटिल, इन्होंने भी संदेश भेजा है, वैदेही ने भेजा है, अशोक पाटिल वरेड़ी से भेजा है, प्रदीप अनंत कृष्णन इन्होंने, शुभलक्ष्मी मस्तकर कहिए नवी मुंबई से, धनंजय ने भेजा है हमें संदेश, और भी कई सारे दोस्त हैं, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगले गीत के तरफ हम रुख करते हैं, और हम सभी की ओर से ये गीत अर्पित है, सभी गीत आज के अर्पित है। तो एंड सिर्फ संगीत को एंजॉय करते हैं और थोड़ी बहुत बातें करेंगे, ज़्यादा संगीत सुनेंगे इस गीत में, क्योंकि यहाँ गीतों का पिटारा जो है, गीतों का खाने का डिब्बा जो है वो आपका खुल रहा है। तो मैं बैक सीट पे जाऊँगा और स्टेयरिंग पे आप होंगे।

जी हाँ, हमारे दोस्त खंडाला से जगन्नाथ केदारे, इनका फ़ोन आया था तो इन्होंने भी रिक्वेस्ट भेजी है। और खंडाला में भी तापमान वैसे जो है गर्मी ज़्यादा है, 40 डिग्री सेल्सियस है ऐसा कह रहे थे। तो जी हाँ, आपके वजह से ही हमें जगह जगह में क्या चल रहा है, क्या हैपनिंग है, कितना तापमान है, गर्मी है, उसका पता चलता है। तो आइए एंजॉय करते हैं अगला गीत, और आप सभी के संदेश मैसेज हमें मिल रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से भी। तो आइए सुनते हैं अगला गीत और थोड़ी बातें करेंगे इस गर्मी के बारे में भी। क्या गर्मी में एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमें बताइए कि अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो क्या ऑप्शंस है, मतलब क्या क्या एक्सरसाइज करते हो, क्योंकि थोड़ा स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। तो वो थोड़ा एक्सरसाइज जो है वो कौन सा कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए। तो हल्की फुल्की बातें करेंगे, खाने का समय हो चला है, तो आइए थोड़ा सा खाने के बाद चल

भी है और थोड़ा दिमाग को भी चलाते हैं कि कैसे खुद को फिट रखते हैं। हमारे साथ जरूर आपके सीक्रेट शेयर करना। लता दीदी की आवाज में अगला गीत, फिल्म अनीता।

जी हाँ दोस्तों, रेनबो क्लॉक में ठीक 1:28:40 हो चले, ठीक 1:30 पे आप सुनेंगे राष्ट्रीय मराठी समाचार, और 1:40 पर हमारा जो कार्यक्रम है हिट एंड हॉट वो जारी रहेगा। और दोस्तों, आप सभी के संदेश हमें मिल रहे हैं, और ये अभी जो गीत हमने सुना वो जानी दुश्मन इस फिल्म से था, और इसको 47 साल हो गए हैं रिलीज़ होके, ऐसी जानकारी हमें प्रणव शिंदे इन्होंने दी है। और भी कई सारे संदेश हैं, और जोतानी जो है हमारे दोस्त राजेंद्र जोतानी, उन्होंने लिखा है कि वो 72 साल के हैं और डेली जो है योगा करते हैं, और मतलब 6 से 7 रोज़ योगा करते हैं और संडे को सिर्फ छुट्टी लेते हैं। जी हाँ, तो ये एक हमारे लिए इंस्पिरेशन है। और भी बातें हम जारी रखेंगे, फिलहाल सुनते हैं मराठी में समाचार, और 1:40 पे मैं आरजे डॉक्टर निखिल आपके संग फिर जुड़ूंगा हमारे प्यारे कार्यक्रम हिट एंड हॉट में। इंतज़ार करते हैं समाचारों का।

जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है हिट एंड हॉट मेरे यानी आरजे डॉक्टर निखिल के संग। और हमारी बातचीत भी जारी थी कि गर्मी में कैसे खुद को फिट रखते हैं आप, क्योंकि बहुत ही आलस आता है, बोर होता है एक्सरसाइज करना, तो ऐसे बोर्डम में भी, ऐसे गर्मी में भी। वैसे अकोला में टेम्परेचर 41 है, ऐसे हमारे जो दोस्त थे विजेंद्र, इन्होंने हम तक पहुंचाई जानकारी। तो आप कैसे फिट कर रहते हो? तो हमारी जो दोस्त है शुभलक्ष्मी मस्तकर, वो लिखती है कि वो रेगुलरली सुबह एक्सरसाइज करती हैं, न सिर्फ पूरे बॉडी का, स्पेशली आँखों का, फेस का और नेक का एक्सरसाइज भी वो करती है और बहुत उन्हें अच्छा लगता है, फिट रहते हैं। इंदौर से हमारे जो दोस्त हैं अजय साखरे, वो लिखते हैं वो इवनिंग वॉक डेली जो है 3 से 4 किलोमीटर जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो जी हाँ, जब हम ऐसी बातें, ऐसे किस्से सुनते हैं तो हमें भी थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है और हम एस्केलेटर छोड़ के सीढ़ी से जाने की कोशिश कर सकते हैं, तो थोड़ा सा बदलाव रूटीन में। शुभदा लिखती है कि फ्लेक्सिबिलिटी वाले एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करती है और डेली योगा के साथ 10 किलोमीटर, बाप रे, वेरी नाइस वेरी नाइस। और बहुत ही अच्छा योगा ज्वाइन किया है उन्होंने, ऑनलाइन योगा भी करती हैं और ये जो है अपर बॉडी लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस और खुद को फिट रखती है। हमारे जो सीनियर दोस्त है यंग एट हार्ट राजेंद्र परमार, लिखते हैं कि रोज़ सुबह वो 45 मिनट्स पार्क में चलते हैं और 15 मिनट प्राणायाम करते हैं और कपालभाति और अनुलोम विलोम भी करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और भी कई सारे संदेश है, तो बॉडी की बात तो हो गई, दिल की बात भी ज़रा सुनते हैं, क्योंकि जब आप आपके जो मैसेजेस स्क्रीन पर हाईलाइट होते हैं तो दिल में भी कुछ होता है। और जी हाँ, हमारे प्यारे जनों का, प्रिय जनों का जब हमें मैसेज आता है, फ़ोन आता है, संदेश आता है, तो कभी कभी नींद भी नहीं आती है, तो ये भी शिकायत हो सकती है। तो आइए थोड़ा सा माहौल जो है वो रोमांटिक माहौल में एक डुबकी लगा के वापस आते हैं उदित नारायण की आवाज़ में, दिल फिल्म से अगला गीत। और किसने ये रिक्वेस्ट भेजी है? जी हाँ, बिहार से मुजफ्फरपुर से हमारे जो दोस्त हैं आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार, इन्होंने ये फरमाइश की है और भी कई सारे नए दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनके बारे में भी बात

दोस्तों घड़ी में ठीक 1:50 होने ही वाले हैं, और यानी घड़ी की सुइयां मुझे बताती रही है कि मेरे जाने का समय जो है वो करीब आ रहा है। और भी कई सारे ढेर सारे संदेश आ रहे हैं, ढेर सारा प्यार आप सभी को, और आप सभी का प्यार और याद हमें मिल रही है। तो कुछ सुझाव ऐसे भी है कि खाने के बाद चलना, या फिर गर्मियों में स्पेशली स्विमिंग के बारे में भी बात की गई, या फिर सुबह फुटबॉल, या स्पेशली संडेज में बॉक्स क्रिकेट खेलना, या फिर फुटबॉल खेलना, रात में बैडमिंटन खेलना, और डांस के बारे में भी चर्चा हुई। तो या फिर फेवरेट पीटी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं। और भी हमारे दोस्त ऐरोली से नितिन स्वामी हमारे साथ है, रघुनाथ

नूरकर हमारे साथ है और मंगेश जोशी है, पंकज मोहड़ है और भी कई सारे हमारे दोस्त हैं। तो शायद किसी के नाम छूट जाए तो माफ़ कर देना। जलगांव से आर्यन सोमवंशी भी हमारे साथ है और अधेश मौर्या भी हमारे संग है। तो ठीक है, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। हिंदुस्तान के साथ नाचने, हिंदुस्तान के साथ गाने, फिर आएगा डॉक्टर निखिल शास्त्री। और अपना ख्याल रखना। तो दो रिक्वेस्ट बैक टू बैक आपके लिए प्ले करूंगा, उसके बाद ठीक 2 बजे आप सुनेंगे मिड डे न्यूज़, 2:15 में दोपहर के समाचार और 2:30 पे मराठी कार्यक्रम सला दोस्त हो बोलू का ही आरजे अमेय बाल स्टूडियो में आ चुके हैं और बहुत ही प्यारा शो करते हैं, तो ज़रूर सुनिएगा 2:30 पे आरजे अमेय बाल को। तो तब तक टेक केयर एंड हैव अ नाइस टाइम।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।

0: जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रहीं और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रहीं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। शाम के ठीक 5 बजे का समय है और ये कार्यक्रम लव यू जिंदगी का समय है जिसे लेकर आई हूँ आज शाम आपके साथ मैं शुभांगी।

आई दिन बाहर के मैं कहूंगी ये जो शाम है, बिल्कुल बाहर लेके तो नहीं आई है, गर्मी का सीजन चल रहा है, लेकिन हफ्ते का ये पहला दिन और पहली पहली शाम आप लोग अपने घर जा रहे होंगे, भाग दौड़ चल रही होगी कि नहीं ये ट्रेन पकड़ना है, नहीं वो बस छूट जाएगी, उतरने के बाद रास्ते में क्या क्या लेकर घर जाना है ये दिमाग में, या तो किसी को ये बोला गया कि घर आते आते ये ले आना है, बोलना नहीं है, ऐसा सब कुछ बहुत दिमाग में आप रख कर निकल रहे हो ऑफिस के लिए, और जो अपने अपने घर में बैठकर संगीत का मज़ा ले रहे हैं चाय की चुस्कियों के साथ, गर्मा गर्म चाय और ये सारे मीठे गाने जो आप अक्सर सुनना चाहते हो, और कहाँ सुनने मिलते हैं, यस 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो, और प्रोग्राम है लव यू जिंदगी।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
1: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
2: म्यूजिकली योर्स।

0: सुन रहे हैं आप एफएम रेनबो और प्रोग्राम चल रहा है लव यू जिंदगी एफएम रेनबो इंद्रधनुष जिसे होते हैं सात रंग। इन सात रंगों को लेकर जो मन चाहा आप रंग लें, सातों रंग भी लें, फूलों की खुशबू लीजिए, चांद के किरणों से रोशनी ज़रा ले लीजिए और उसे अपनी कलम में डाल करना अपनी ज़िंदगी का एक चित्र बनाइए या लिखिए, जो भी आप चाहो, लेकिन वो जो बनेगा ना वो सबसे खूबसूरत चित्र होगा, वो सबसे खूबसूरत लिखावट होगी आपके अपनी ज़िंदगी की, जो जो आपने सोचा अपने लिए। ये समय होता है वैसे भी लव यू ज़िंदगी का अपने लिए सोचने का, अपने लिए समय देने का। तो जो जो आपने अपने लिए सोच रखा है वो कितना खूबसूरत है, कैसा है, अगर नहीं है तो उसे खूबसूरत बनाना कैसे है, ये सब आपको उस चित्र में नज़र आएगा।
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
1: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल,
2: म्यूजिकली योर्स।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी, और किशोदा का गाया हुआ ये गाना सुनकर कुछ कुछ कुछ ऐसा हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। होता है ना ऐसा कभी कभी, कोई गाना सुनकर कोई याद ताज़ा हो जाती है, या हमें कोई गाना कुछ सोचने के लिए इंस्पायर कर जाता है। हम वैसे भी अपने लिए कम और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, किसको क्या पसंद है, यहाँ से लेकर सब कुछ हम याद रखते कि नहीं, घर के कोई सदस्य हो, हमारे फ्रेंड्स हो, जो भी हमारे रोज़ रोज़ मिलने वालों में से भी जो होते हैं ना, वो भी तो हमारे दोस्त ही बन जाते हैं। ट्रेन में सफ़र करते हुए भी तो ऑफिस का रास्ता है, चलो रोज़ एक ग्रुप बन जाता है। तो अक्सर किसी न किसी के लिए हम सोचते ज़रूर रहते हैं, लेकिन ये होता है ना कभी कभी अपने लिए सोचना हम छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, रह जाता है, इसमें से कुछ ना कुछ तो होता है ना। लेकिन ये जो समय होता है ना लव यू ज़िंदगी का, ये आपको रिमाइंड करता रहता है कि अरे टक टक टक टक करता है, दस्तक देता है आपके दिल पर और कहता है कि ए, अपने लिए कुछ सोचा, अपने लिए समय निकाला, कुछ प्लान्स है खुद के लिए, अपने लिए कुछ ना कुछ एक खुशी ढूंढना। पूरे दिन भर में हमने क्या क्या किया, किसके लिए किया और अपने लिए क्या किया, ये अगर हम रात को सोचने को बैठे, नींद नहीं आ रही है, कुछ हो रहा है या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, फिर भी कुछ ना कुछ तो ये दिन भर में क्या क्या हुआ ऐसे सब जब मन में आता है ना, तो अपने लिए कितना समय दिया है, बस 5 मिनट ही अपने लिए सोच लीजिए। और फिर आपको ये जब पता चलता है ना कि अरे ये तो चीज़ मैंने सोची नहीं थी, बहुत दिन से मुझे करना है, कब से सोच रखा है, चलो अब कर लेते हैं, तो ये जब मन में आता है ना तो बस उसे झट से कर देना है, चलो कर लेंगे, अब इतना समय बीत गया तो और थोड़ा ही सही। ऐसा ना करिए तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हाँ अच्छा हुआ, जैसे ही मन में आया मैंने कर दिया। बहुत देर हम किसी चीज़ के लिए जब रुके हुए होते हैं, वो जो इंतज़ार होता है, वो भी कभी कभी ऐसा लगता है कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे नहीं रुकना है। तो वो जब हम सोचते हैं ना कि नहीं रुकना है, तो बस नहीं रुकना है, उस समय जो खुशी चाहिए उस सोच की भी खुशी होती है ना कि आज मैंने कुछ अच्छा सोचा है, तो छोटी छोटी खुशियाँ ही तो हैं जो कहने के लिए हमें एक बहाना देती है ज़िंदगी से कि लव यू ज़िंदगी।

ये गाने सुनकर एक एनर्जी मिलती है, ये ऊर्जा मिलती है। और कुछ लोग भी हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, हमारे आसपास ऐसे होते हैं कि जिनसे बात करने के बाद, जिनसे मिलने के बाद एक ऊर्जा मिलती है हमें। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में ही सही या रास्ते में कहीं, अचानक से आपको कोई पुरानी साथी मिल जाए जिनके साथ आपने काम किया हो, और फिर ऐसा अरे बाप रे कितने सालों बाद मिलने की वो जो खुशी होती है और वो जो साथ काम करने की

जो दिन होते हैं, वो जब याद आते साथ में मिलकर, जब वो बातें होती है, उसके बाद जो ऊर्जा मिलती है हमें, जो एनर्जी मिलती है, जो उत्साह मिलता है, कभी आपने नोटिस किया है कि हाँ ये पल भी ऐसे होते हैं जो लव यू ज़िंदगी कहने के लिए हमें मजबूर करते हैं। ऐसे छोटे छोटे पल हमारी ज़िंदगी हमें अक्सर देती रहती है।

अब से कुछ ही देर में ठीक 6:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और उसके बाद 6:15 पर कार्यक्रम अंदाज वेयर में लेकर आऊंगी। बस सुनते रहिए हमारे साथ रहिए 107.1 आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो म्यूजिकल योर्स।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो। शाम के ठीक 6:15 का समय है और ये समय कार्यक्रम अंदाज़ बयां का लेकर आई हूँ मैं शुभांगी।

गजल मेरी नहीं ये गजल है आपकी, ऐसा इस गाने में कहा गया। ये गजल बड़ी ही अनोखी, बहुत ही अलग तरीके से बनाई हुई गजल, सुन रहे हैं आप अंदाज़े में। और ऐसी भी गजल हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई संगीतकार किसी गजल को अलग ट्रीटमेंट देता है, अलग तरीके से पेश करता है, तो वो होता है उस संगीतकार का अंदाज़े बयां कि मुझे इस तरह से इस गज़ल को ट्रीट करना है, मुझे इस तरह से इस गज़ल को पेश करना है। वैसे आज के अंदाज़े बयां में कुछ वो गाने जिनमें प्यार मोहब्बत, ये जो हमारी फिल्मों के एवरग्रीन विषय रहा है ना, तो उसको किस तरह से इन गीतों में बताया गया है, उसका जो उस हीरो के लिए या उस हीरोइन के लिए उस फिल्म में किस तरह से इस मोहब्बत को शब्दों के ज़रिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो सही लेकिन कुछ अलग मायने रखती है ये चीज़ मेरे लिए, ये बताता हुआ गाना हो, ये ख्याल आज मैंने रखा, तो एक कोशिश तो ज़रूर कर रही हूँ, अब देखें। इसके बाद फिर एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही गाना है ये, तो अभी अपने गज़ल सुनी रफ़ी साहब की आवाज़ में कर्ज की, और इसके बाद बदलते रिश्ते

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
2: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
1: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
2: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
1: सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
2: म्यूजिकली योर्स।

साहा जी के कलम से उतरा हुआ ये गीत फिल्म इज्जत से सुन रहे थे आप रफी साहब, लता जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और इसमें जो हीरो के लिए लिखी गई पंक्तियां हैं, देखिए वो हीरोइन जो है वो कुछ सवाल पूछ रही है, तड़प कर कुछ सवाल पूछ रही है, और ये हीरो की जो एक मजबूरी है वो हमें गाना अगर ध्यान से हम सुने तो हमें ये पता चल जाता है कि क्या लिखा है, कितनी गहराई से लिखा है। दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी, हज़ारों गम हैं इस दुनिया में अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं हम क्या करें, एक मोहब्बत ही सिर्फ गम है, एक यही एक ज़िंदगी में गम है, ऐसा तो नहीं, और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है ज़िंदगी में जिस वजह से मजबूर हो जाता है ये हीरो। ये वो जो बयां कर रहा है पूरे गाने में, दोनों के बीच एक जो डायलॉग चल रहा है उससे ऐसा लगता है ना कि एक म्यूजिकल डायलॉग हो रहा है। इसके बाद रफी साहब की आवाज में ये जो है इसमें दिल कितना मजबूर हो गया है ये बयां किया गया है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर

इस पूरे गाने में अपने प्यार पर, अपनी मोहब्बत पर एक फक्र है, नाज है। दुनिया में सबसे पहले जिसने ये दिल दिया, दुनिया के सबसे पहले दिलबर को सलाम। ये थॉट कितना अनोखा है, मतलब ये हम कभी सोचते ही नहीं है, है ना। हम कितनी शेरो शायरी सुन लें, कर लें, पढ़ लें, कितने ही गाने सुन लें, कितने फिल्में देख लें, लेकिन ये कभी मन में हमारी नहीं आता है। लेकिन ये थॉट गीतकार के मन में तो आता है। और जब गीतकार ऐसा कुछ लिख देते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि अरे हमने तो सोचा ही नहीं। जिसने हमें मिलाया, जिसने जुदा किया, उस वक्त उस घड़ी उस गजर को सलाम, प्यार तेरी पहली नज़र को सलाम। क्या बात है, ओह इसलिए तो अंदाज़े बयां का जो मज़ा है वो इन सारी सोच, ये अल्फाज, उनका जो असर है उसमें है। और इसलिए अंदाज़े बयां सुनवाते हुए भी और सुनते हुए भी शब्द प्रधान गायकी है अंदाज़े बयां की, ये हमें नहीं भूलना है। अब इसके बाद फिल्म एक नज़र से ये गज़ल रफ़्ज़ा अब्लता जी।

0: और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अब से कुछ ही देर में ठीक 7 बजे आप सुनेंगे समाचार। कार्यक्रम अंदाज़े बयां को बस यहीं पर समेटना है। समाचार के बाद मैं हाजिर हो जाऊंगी लेकर कार्यक्रम हम तुम। बस सुनते रहे हमारे साथ, रहे 107.1 आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो, म्यूजिकल योर्स।
2: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
3: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
2: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
3: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
2: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
3: म्यूजिकली योर्स।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स
1: 107.1 मेगाहर्ट्ज आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो। प्रोग्राम है हम तुम अब से लेकर ठीक 8 बजे तक। और आज के हम तुम में मैं अब से ये सवाल पूछ रही हूँ कि इतने सारे गाने जो हम सुनते रहते हैं, आप सुनते रहते हैं, और ऐसा नहीं होता है कि आपने आज नहीं सुना, चलो आज हम भूल गए, ऐसा नहीं होता है। आप हर रोज़ सुनते हो, एफएम रेनबो सुनते हो। तो ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी में संगीत का क्या महत्व है, आपके जीवन में संगीत किस तरह से महत्वपूर्ण है, क्या रोल प्ले करता है, क्या मायने रखता है। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना जवाब लिखकर भेजना है कि संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है। 8657661071 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर।

मजनू, शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

0: आप सुन रहे हैं हम तुम 107.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी मुंबई एफएम रेनबो। और मैंने आपसे ये सवाल पूछा कि संगीत का आपके जीवन में कितना महत्व है, कितना महत्वपूर्ण है संगीत आपके लिए। तो आपने जो हमें जवाब भेजे, बड़े अच्छे अच्छे जवाब हैं, बड़े सुरीले जवाब हैं मैं कहूँगी। इचल करंजी से अरविंद कुलकर्णी कहते हैं कि अगर संगीत नहीं होता तो जीवन निरस होता, अधूरा होता। संगीत कला ही नहीं है बल्कि जीवन जीने की एक अद्भुत जड़ी बूटी है जो हमें हर पल नया उत्साह देती रहती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पंकज मुखौड़ कहते हैं कि उनके लिए संगीत किसी दवाई की तरह है, दिन भर की थकान भूल जाते हैं और अगर मूड ख़राब हो तो मूड अच्छा बनाने के लिए वो संगीत सुनते हैं। ओके, दीपाली शिरोडकर, दीपाली जी कहती है कि भावनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है संगीत। संगीत जीवन को सुंदर बना देता है, आनंदमयी बना देता है। बलकरण वर्मा जी कहते हैं कि संगीत का जीवन में बहुत बड़ा योगदान है, अगर संगीत नहीं होता तो जीवन बेचैनी से गुजरता। राजस्थान से मेहर अरोरा कहते हैं कि उनके लिए संगीत ऑक्सीजन की तरह है। क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए आप अपनी जो मोबाइल फ़ोन है ना उन्हें उठाइए और हमें जो जो आप में से जवाब देना चाहते हैं प्लीज़ हमें बताइए कि आपके जीवन में संगीत का कितना महत्व है, क्या महत्व है, संगीत आपके लिए क्या रोल प्ले करता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071, 8657661071।
1: आते जाते खूबसूरत हमारा सड़कों पे कभी कभी इतने

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

7:35 हो चुके हैं। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम हम तुम, और संगीत का आपके जीवन में कितना महत्व है, क्या महत्व है, कितना योगदान है, ये मैंने आपसे पूछा है। और अजय साखरे कहते हैं कि हमारे लिए संगीत उतना महत्वपूर्ण है जितना कि दो समय का भोजन। ओ हो हो। राम प्रजापति जी कहते हैं कि वो सुबह से रात 8 बजे तक FM रेनबो सुनते हैं और काम करते करते उन्हें ये पता भी नहीं चलता कि कितना काम हुआ है और काम हो जाता है। यह है संगीत का जादू। इस बिल्कुल सही कहा राम प्रजापति जी आपने। प्रणव शिंदे कहते हैं कि जीवन में संगीत का जो महत्व है वो हमें खुशी देता है, शांति देता है, आनंद देता है, बिल्कुल देता है। हाँ हाँ बिल्कुल प्रणव जी, तनाव और चिंता को दूर करता है, ये बात कही ना आपने, मन को सुकून देता है, जीवन को रंगीन और मेल मिलाप से भर देता है और दूसरों के साथ जोड़ता है। आहा, ये तो बात बिल्कुल सही है कि दूसरों के साथ संगीत हमें जोड़ता है। संगीत की भाषा ही ये भाषा है, संगीत ही उसकी भाषा है, उसके लिए किसी भाषा की ज़रूरत नहीं होती, बस जो कहना है वो पहुंच जाता है संगीत के ज़रिए। ये ताकत है संगीत की। तो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं आप, जिन्होंने अभी तक हमें सवाल का जवाब नहीं दिया है, उनके लिए मैं फिर से एक बार हमारे व्हाट्सएप नंबर दोहरा दूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071। आपको बताना है कि आपके जीवन में संगीत का कितना महत्व है।

0: वजह की तलाश में वक्त ना गवाया करो,
1: बेवजह बेपरवाह बेझिझक बस मुस्कुराया करो।
0: बातें जो निकलती हैं सीधा दिल से
1: और पहुंचती हैं सीधा दिल तक,
0: सुनते रहिए 107.1 MHz आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल,
1: म्यूजिकली योर्स।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सात बजकर 7:46 का समय हो चुका है। धीरे धीरे हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा है कि संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है। अंधेरी से दिलीप मास्केरी कहते हैं कि बचपन में उन्होंने जो संगीत सीखा है, बचपन से जो सुना है, सीखा नहीं सुना है, तो वो उन्हें बहुत भाता है और उसका जो असर बहुत लंबी देर तक रहता है। हीरामणि वर्मा कहते हैं कि संगीत उनके लिए दवा है, दिल और दिमाग बिल्कुल तरोताज़ा हो जाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आरती जी कहती हैं कि संगीत की देवता सरस्वती माँ, बिल्कुल बिल्कुल, और जो पूरे संसार को सुर ताल लय में रखती है। आरती जी बढ़िया जवाब। प्रदीप अनंत कृष्णन जी कहते हैं, ओह इन्होंने तो हमारी एफएम रेनबो के लिए कह दिया, ईस्ट और वेस्ट मुंबई एफएम रेनबो इज़ द बेस्ट। अशोक पाटिल कहते हैं कि जिंदगी कैसे मुस्कुरा कर जीना है ये बताता है संगीत। प्रमोद चिंसोड़कर कहते हैं कि अगर संगीत नहीं है तो जीवन कुछ भी नहीं है। जब कभी दिमाग काम नहीं करता है तो दिमाग को शांति मिलती है संगीत से। बिवलकर जी कहते हैं कि संगीत सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, अपनों के साथ भी जोड़ता है और अपने साथ भी जोड़ता है। एक खुद से नई पहचान सी हो जाती है संगीत सुनते सुनते। जो जो हमारे दिल में ख्याल आते हैं कोई गाना सुनते हुए, हर गाने के साथ ऐसा नहीं होगा लेकिन कभी कभी किसी गाने के साथ ऐसा हो जाता है ज़रूर, और तब ऐसा लगता है ना कि ये संगीत हमें अपने आप से भी नए सिर से जोड़ता है। अब इसके बाद बिल्कुल गाने तो आपका इंतज़ार कर ही रहे हैं लेकिन समय बहुत कम रह गया है, तो चलिए बातें कम गाने ज़्यादा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8657661071।

आपके ढेर सारे मैसेजेस आए हैं और आप सभी को आज के ये सारे गाने बहुत ज़्यादा पसंद आए, इसलिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। वैसे आपको बता दूँ कि बहुत सारे हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं, सुरेश पाटिल, मुकेश कश्यप, संजय दर्शन, चेतन कुमार, पैठण से गणेश मगर, कोल्हापुर से रघुनाथ खनुकर, पुणे से मुकुंद कुलकर्णी, असम से हितेंद्र दास, और ये बहुत बहुत बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है जो हमारे हमेशा ही प्रोग्राम सुनते हैं। सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल शुभांगी चाहेगी आपसे इजाजत। ठीक 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रॉक विद चौक, बस सुनते रहिए, हमारे साथ रहे 107.1 आकाशवाणी मुंबई FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
3: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है, इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
4: Several key agreements were signed.
5: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
4: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
6: Against the assessment of
2: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
6: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गई और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गेल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेरजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध

0: इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

हंसो तो दिन निकले, चुप रहो तो रातें हैं। तुम हंसो तो दिन निकले, चुप रहो तो रातें हैं। किसका गम कहाँ का गम, सब फिजूल बातें हैं। प्रोग्राम चल रहा रंगे महफिल, मैं हूँ आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और इस वक्त इन लाइनों के साथ ही ये खूबसूरत गजल चिक चिक साहब की आवाज़ में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

लाखों उसने परवाज लाई है, लाखों उसने परवाज लाई है, लेकिन इस तबस्सुम का जवाब कहाँ। मुस्कुराहट के नूर से रोशन इस खूबसूरत चेहरे की मिसाल कहाँ।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

चंद कलियां निषाद की चुनकर मुद्दतों महवयास रहता हूँ। चंद कलियां निषाद की चुनकर मुद्दतों महवयास रहता हूँ। तेरा मिलना खुशी की बात सही, लेकिन तुझसे मिलकर भी उदास रहता हूँ।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

प्रोग्राम चल रहे रंग के महफिल, मैं हूं आपके साथ प्रियंका, आपके अपने रेडियो स्टेशन आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। और अब जो गजल है ये है तो फिल्म साजन से, बट इसको लिखा बड़ी शिद्दत से गया है और ऊपर से बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाज़, जस्ट ऊपर से पंकज उदास भी है, बेस्ट कॉम्बिनेशन। इंजॉय दिस गजल।

0: चलिए आज का सफर बस यहीं तक और फिर मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिएगा अपना।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया।

0: गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों के अनुसार आज सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे वे, जहां सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई है, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का आज नई दिल्ली में विमोचन किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान CSIR और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान संचार, जनभागीदारी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करना है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री ने घटना के जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी।
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 12:05 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए जीरो आवर शो, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित।

0: अलका याग्निक जी की आवाज में कितनी बेचैन होके तुमसे मिली। 12:13 हो चुके हैं, सुनते रहिए जीरो आवर शो।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: श्रेया घोषाल जी की आवाज़ में अभी अभी आपने सुना एक बहुत ही प्यारा सा गीत, अगर तुम मिल जाओ। 12:19 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम जीरो आवर शो।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक

भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

बारह बजकर 58 मिनट हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम जीरो आवर शो। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ. एन राजन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है।

0: व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से दो दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगी। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि 22 मई तक ग्रीष्मकालीन फसलों का बुआई क्षेत्र 86 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष करीब 2.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि दर्ज हुई है। धान की बुआई 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में की गई, जबकि दलहन की खेती 27 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान CSIR और राष्ट्रीय उन्नत अध्ययन संस्थान NIAS के बीच नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य विज्ञान संचार, जनभागीदारी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी नीति अनुसंधान में सहयोग को मजबूत करना है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। DGCA ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM रेनबो चैनल के साथ। 1:05 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सुहानी रात, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसे गाया है अलका याग्निक जी और उदित नारायण जी ने।

के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: 1:25 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम सुहानी रात।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: A.R. रहमान जी की आवाज में रहना तू है जैसा तू। 1:45 हो चुके हैं, सुनते रहिए सुहानी रात।
1: आकाशवाणी एट 90 की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम कल सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचू बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात बीएसएफ जवानों से बात

0: किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा भी मौजूद रहेंगे। विज्ञान और केंद्रीय प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान, नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉक्टर ईवा ओर्तेगा पोइनो के नेतृत्व में वाले उच्चस्तरीय मंत्रिमंडल से मुलाकात करेंगे। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। वहीं खेलों में वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुषों के फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल के साथ। 2:05 हो चुके हैं और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भुलाए न बने। और इस प्रोग्राम में एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के फैलने के बाद एयरलाइंस के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी की है। महानिदेशालय

पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में स्पेन के विज्ञान नवाचार और विश्वविद्यालय मंत्रालय की महासचिव डॉक्टर ईवा ओर्तेगा पाइनो के नेतृत्व वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। बैठक में भारत और स्पेन के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटल परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत सामग्री, डिजिटल हेल्थ और अंतरिक्ष विज्ञान जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया। नागालैंड के मुख्यमंत्री और नागा पीपल्स फ्रंट के अध्यक्ष नेफ्यू रियो ने नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के NPF में विलय को निर्वाचन आयोग से औपचारिक मंजूरी मिलने का स्वागत किया है। कोहिमा में पार्टी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री रियो ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ने इस महीने की 4 तारीख को विलय को औपचारिक मंजूरी दी है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। और खेलों में IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच शाम 7:30 से शुरू होगा। वहीं कल एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला राजस्थान रॉयल से होगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

पुराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के तहत मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रपति आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। आज शाम राष्ट्रपति गंगतोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। कल राष्ट्रपति नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी और वहां तैनात सैनिकों से बातचीत भी करेंगी। इसी दिन वे सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगतोक के पालजोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के राजस्थान दौरे पर रहेंगे। उनका पहला कार्यक्रम आज सुबह 10:30 बजे सीमा सुरक्षा बल की 179वीं बटालियन की सांचो बॉर्डर चौकी पर होगा। कार्यक्रम के दौरान एक प्रहरी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा और महिला बैरकों का वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। गृह मंत्री सीमा पर तैनात BSF जवानों से बातचीत भी करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की व्यवस्था को मजबूत करने तथा ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं।

ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखित पुस्तक अपनापन का विमोचन आज नई दिल्ली में किया जाएगा। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पुस्तक का विमोचन करेंगे। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में भीषण लू की चेतावनी दी गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बांदा में तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो देश में सबसे अधिक तापमान में शामिल रहा। और खेलों में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, एचएस प्रणॉय, किदांबी श्रीकांत और आयुष सेट्टी मुकाबला करेंगे। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।